चिक मेगाहर्ट्स दुना न्यूज ऑन एआईआर एबिका द्यू आकाशवाणी करगिलिन दिरिंग फ्रचुक पाइपी प्रोग्राम उन्न यम्बो नचायंती दुनु क्लिपसित नचे जुना सलाम पोको बोल सोंशिक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें जल संसाधनों को बढ़ाना और सुरक्षित करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खुशी की बात है कि कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि पानी के सही उपयोग के लिए जागरूकता जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. These Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार 14 राज्य इसमें भाग ले रहे हैं। नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में इसमें शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की एक सीट के उपचुनाव की घोषणा कर दी है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई है। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी। 16 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा। 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि आधार, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आभा आईडी के जरिए भारत ने एक मजबूत और व्यापक डिजिटल स्वास्थ्य व्यवस्था तैयार की है। न्यूयॉर्क में ग्लोबल साउथ एआई फ्रेमवर्क पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि एआई मॉडल को स्थानीय और विविध आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे लोगों की जरूरतों के अनुरूप प्रभावी समाधान दे सकें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग न्यूयॉर्क में कल V4+ भारत के विदेश मंत्रियों की पहली बैठक हुई। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेक गणराज्य के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। ये बैठक V4 की स्लोवाकिया की अध्यक्षता में हुई। भारत और विशेषज्ञ समूह के बीच सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार विमर्श किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा और सुरक्षा, संपर्क, शिक्षा, लोगों की आवाजाही और जनसंपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों पर चर्चा हुई। मंत्रियों ने वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रम, शांति और सुरक्षा तथा बहुपक्षीय मंचों पर

नमस्कार साथियों, दोपहर की इस घड़ी में जब सूरज ठीक सिर के ऊपर लगता है और हवा का रुख बदलने लगता है, तब यही वो समय होता है जब हम एक दूसरे के आसपास बैठते हैं, बातें करते हैं और दिन को थोड़ा हल्का बनाते हैं। आप सुन रहे हैं घर आंगन, मैं हूँ श्रुति पुरी और ये कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है FM गोल्ड की 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल से ये कार्यक्रम मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। और जो श्रोता डिजिटल माध्यम से हमसे जुड़े हैं वो हमें यूट्यूब चैनल AIR न्यूज लाइव 24x7 पर भी सुन सकते हैं। और अब एक छोटा सा रोचक सा प्रश्न आपके लिए। हम सबके घरों में कोई ना कोई ऐसी एक छोटी सी आदत या नुस्खा जरूर होता है जो दादी नानी या माँ से हमें विरासत में मिलता है। हो सकता है वो चाय बनाने का कोई खास तरीका हो, या फिर मौसम बदलने पर कोई घरेलू नुस्खा, या फिर कोई ऐसी बात जो घर के बड़े अक्सर दोहराया करते हैं। आप हमें बताइए कि ऐसी कौन सी एक आदत या नुस्खा है जो आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। अपना जवाब हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर fmgoldga@gmail.com। ईमेल आईडी दोबारा सुनिए fmgoldga@gmail.com। और आपके भेजे किससे हम कार्यक्रम में जरूर शामिल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का दिन जिस महान व्यक्तित्व की जयंती का है वही आज के सुविचार की प्रेरणा भी है। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव वलंगईमान में जन्मे भारत के महान समाज सुधारक और कूटनीतिज्ञ VS श्रीनिवास शास्त्री की आज जयंती है। शास्त्री जी सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वो एक बेहतरीन वक्ता और मध्यस्थ भी थे। विदेशों में बसे भारतीयों की सेवा के लिए भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। वे थे सच में एक प्रेरक व्यक्तित्व। VS श्रीनिवास शास्त्री जी का एक सुविचार आज के लिए। शास्त्री जी कहा करते थे कि हमारा काम सिर्फ अपनी पूरी क्षमता से अपना कर्तव्य निभाना है।

परिणाम की चिंता मत करना, यह हमारा काम नहीं है। यानी मेहनत और ईमानदारी से अपना फर्ज निभाइए और नतीजा अपने आप संवर जाएगा।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे गीता मेरा नाम फिल्म में। तो दोस्तों अब चलते हैं देश के उत्तर पूर्व की ओर मणिपुर में। मणिपुर में एक अनोखा उत्सव आज के दिन मनाया जाता है जिसे हेइक्रो हिडोंगबा कहते हैं। ये मणिपुर का प्रसिद्ध नाव उत्सव है। ये मणिपुर कैलेंडर के लागबन माह के 11वें दिन मनाया जाता है और इसकी शुरुआत महाराजा भाग्यचंद्र के शासनकाल में हुई थी। इम्फाल के जो बिजॉय गोविंदा मंदिर के पास बनी खाई है उसमें दो लंबी नावों के बीच ये दौड़ होती है और इससे पहले भगवान विष्णु और बिजॉय गोविंदा की पूजा अर्चना भी की जाती है।

जाती है। दौड़ के दिन 108 आंवलों की माला और 108 चावलों के दाने जो होते हैं उसकी एक और माला भगवान को अर्पित की जाती है। सदियों बाद भी ये परंपरा आज भी उतनी ही श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में आज ही डोल ग्यारस मनाई जा रही है। भादो

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब सूरज खुद ही दिन और रात को आधा आधा बांट देता है? जी हाँ, आज के दिन शरद विषुव यानी ऑटम इक्विनॉक्स है, जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं और ये आज या कल के दिन के बीच में ही होता है। ये वाकई प्रकृति का एक अद्भुत संतुलन है। साल में ये सिर्फ दो बार होता है, जब सूर्य की किरणें धरती के भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं और दुनिया के हर कोने में दिन और रात की लंबाई लगभग समान हो जाती है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे रातें लंबी होने लगती हैं।

सर्दियों की आहट शुरू हो जाती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक खाली खगोलीय घटना नहीं है बल्कि एक सीख भी है। जैसे दिन और रात का संतुलन जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में भी काम और आराम का संतुलन भी बना रहना चाहिए। हमारे पुरखे भी मौसम के इस बदलाव को बहुत बारीकी से देखते थे और अपने खान पान और दिनचर्या को उसी हिसाब से ढालते थे। तो चलिए आज सूरज की इस सीख को अपने जीवन में भी उतारते हैं और अपने दिन में भी काम और आराम का हिसाब उतना ही बराबर रखने की कोशिश करते हैं जितना आज प्रकृति ने खुद बना दिया है।

श्रोताओं, अब वो बात जो मेरा पसंदीदा सेगमेंट है इस प्रोग्राम का, वो ये कि जब मैं आप लोगों की मेल पढ़ती हूँ, आप लोगों के किस्से सुनती हूँ, आप लोगों की बातें सुनती हूँ, रोचक बातें सुनती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सोचती हूँ आपको भी उतना ही पसंद आता होगा। तो आज की इस मेल जो हमारे पास आई है उसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं। हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और वो प्रश्न था कि ऐसी कौन सा नुस्खा या ऐसी कौन सी बात है जो दादी नानी के ज़माने से अब तक चली आ रही है, घर के बड़े अभी तक उस बात को बार बार दोहराते हैं और आपके आने वाली पीढ़ी में भी वो विरासत के तौर पर पहुंच रही है। तो वो प्रश्न का उत्तर सबसे पहले हमें भेजा है नवीन भाटिया जी ने मोती नगर दिल्ली से। ये लिखते हैं, घर आते ही सीधा पानी ना पीने की बजाय कुछ बिस्किट वगैरह खाकर ही पानी पीना चाहिए और यही वो आदत है जो हमारे घर में बरसों से चली आ रही है और मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी आदत है और ये हमारे जैसे कई घरों में ये आदत आज भी अपनाई जाती है। और पंकज बिंदल जी का ये बेल हमें आया है, लिखने वाले हैं राजू अग्रवाल जी चौधरीवास से, पंकज बिंदल जी, केशव, प्रयाग, प्रयांशी और विवेक। ये लिखते हैं, नमस्कार जी, हमारे घर में पूर्वजों के समय से ही घर पे आने जाने वाले का बहुत आदर किया जाता था, मेहमानों को हम भगवान की तरह मानते हैं। आप भी कभी आइए, हमारे आकाशवाणी के सभी परिवार को ये सादर आमंत्रित कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय से आभार राजू अग्रवाल जी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारी जो भारतीयों की ये परंपरा भी है कि हम जब घर में कोई अतिथि आता है तो उसको देव समान मानते हैं, नारायण मानते हैं, भगवान मानते हैं। और एक मेल हमें आया है अफरोज शेख जी का, ये सोपुला बिहार से लिख रहे हैं। ये लिखते हैं कि सत्तू को पानी में घोलकर हमारे घर में पिलाया जाता था और चुकंदर का छिलका पानी में उबालकर जो उसका पानी छाना जाता था उसमें नींबू निचोड़ कर अगर हम पीते थे तो हमारे घर में सभी कहते थे कि चेहरे की झुर्रियां कम हो जाती हैं। तो ये तो बहुत ही बढ़िया नुस्खा बताया आपने अफरोज जी, ये तो हम सभी के काम का नुस्खा है और सत्तू को तो सुपर फूड भी कहा जाता है, तो ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छी हैं और घर में बुजुर्ग इस तरह की चीजों की आदत अक्सर ही डाल दिया करते थे। एक और मेल हमारे पास आया है सुदर्शन मुखी जी का, अनीता मुखी और सिमरन मुखी जी का, शांति नगर सोनीपत से। ये लिखते हैं कि कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और हमारे बड़ों की शिक्षा है कि हमेशा सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है आपने। और रात को घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, आपका जीवन मंगलमय हो। ये आपका मेल आया है सुदर्शन मुखी जी। हाँ बिल्कुल सही बात है, कुछ घरों में ये बात आज भी कही जाती है कि सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आप सबसे ज्यादा प्राणवायु को अपने अंदर ले पाते हैं। तो एक मेल और आया है हमारे पास, ये मेल हमें लिखा है गौरी शंकर जी ने नांगलोई दिल्ली से। ये लिखते हैं कि राम राम, हमारे जो दादी दादा और नानी नाना का जो कहना था वो ये था कि जो तजुर्बा वो हमें सारी जो हम ग्रहण करते हैं, दादा दादी और नाना नानी का जो अनुभव हम लेते हैं वो हमें सारी जिंदगी काम आता है। कई बार मैं काम में परेशान हो जाता था तो मेरी दादी कहा करती थी कि ये एक जिंदगी का तजुर्बा है जो तुम्हें अपने जिसमें तुम्हें पास होना है, फेल नहीं होना है। और वो इतनी हिम्मत बढ़ाती थी, काम में सफलता मिलती थी और आज भी जब भी मुझे कभी भी मैं परेशान होता हूँ तो मुझे उनकी ये सारी बातें याद आती हैं। ये तो एक बहुत ही प्रेरक बात है गौरी शंकर जी, क्योंकि घर में जितने भी बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, वो हमेशा बच्चों के लिए एक प्रेरणा

सूत्र का काम करते हैं और आज भी हमारे बड़े हमारे साथ हमें प्रेरणा ही देते हैं। जब भी हम उदास होते हैं, जब भी हम किसी काम से थक जाते हैं, तो उनकी प्रेरणा हमें अक्सर याद आती है। और अब समय है आपको एक प्यारा सा गीत सुनाने का।

लोफर फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। श्रोताओं, सुबह घर से निकलिए तो हॉर्न की आवाजें, लंबा जाम और धुएं से भरी हवा। दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या जयपुर, हर शहर की सुबह अब कुछ ऐसी ही होती चली है। और शायद इसीलिए आज का दिन हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हर छोटे से छोटे काम के लिए गाड़ी निकालना वाकई जरूरी है। आज विश्व कार मुक्त दिवस है, जिसका मकसद बस इतना सा है कि साल में कम से कम एक दिन हम अपनी गाड़ी को आराम दें और पैदल चलें, साइकिल उठाएं या मेट्रो या बस से सफर करें। हमारे यहाँ तो ये बात और भी मायने रखती है। शहरों में बढ़ते वाहन सबसे बड़ी वजह है उस प्रदूषण की, जिससे हम हर सर्दी में जूझते हैं। और मजे की बात ये है कि हमारे शहरों में आज भी ज्यादातर सफर छोटी दूरी के होते हैं। सब्जी लेने जाना हो, बच्चों को स्कूल बस तक छोड़ना हो या पास के बाजार तक जाना हो, ये सब तो पैदल भी हो सकता है। बस इतना है कि आदत छूट गई है। और सच कहूं तो जब सड़कों से गाड़ियों का शोर कम होता है तो वही सड़कें अपना स्वरूप बदल लेती हैं। बच्चों को खेलने की जगह मिल जाती है, पड़ोसी रास्ते में रुककर एक दूसरे का हाल पूछ लेते हैं। हम में से कितने ही लोग होंगे जिनको अपने बचपन के वो मोहल्ले याद होंगे जहां गलियां गाड़ियों से नहीं बल्कि हंसी के ठहाकों से भरी होती थी। तो क्यों ना आज एक छोटी सी कोशिश करें, एक काम ऐसा चुनिए जो बिना गाड़ी के आप कर सकें। हो सकता है कि उस थोड़े से पैदल रास्ते में आपको अपना वही पुराना मोहल्ला फिर से मिल जाए।

दोस्तों, शायर कमर जलालवी का एक मशहूर शेर है कि तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसुरदा से रहते हो, तारों की बहारों में भी कमर तुम अफसुरदा से रहते हो, फूलों को तो देखो कांटों में हंस हंस के गुजारा करते हैं। बरसों पुराने इस एक शेर में शायद पूरे गुलाब की कहानी छुपी है। हम सब गुलाब को प्रेम का प्रतीक मानते हैं, लेकिन इस गुलाब की कहानी उससे भी कहीं गहरी है। गुलाब जितना कोमल दिखता है उतना ही मजबूत भी होता है। सूची एक नाजुक सी पंखुड़ी कांटों के बीच खिलती है और फिर भी अपनी खुशबू और अपना रंग नहीं छोड़ती। ये अपने आप में हिम्मत की मिसाल है। जीवन में भी तो यही होता है। मुश्किलों के कांटों के बीच ही तो इंसान का असली रंग निखरता है। जो व्यक्ति हर मुश्किल के बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ता वही तो असली गुलाब है। और गुलाब तो कई तरह की दवाइयों और सुगंध में भी काम आता है। गुलाब के इतने उपयोग हैं कि उनको उंगलियों पर नहीं गिना जा सकता। यही वजह है कि आज गुलाब सिर्फ प्रेमियों के बीच नहीं बल्कि योद्धाओं के बीच भी उतना ही सुंदर लगता है। ये प्यार की भाषा बोलता है और हौसलों की भी, और शायद यही कारण है कि गुलाब हर मौसम हर मौके पर अपनी जगह बना ही लेता है।

बीवी हो तो ऐसी, इस फिल्म में अभी आप अनुराधा पौड़वाल और मोहम्मद अजीज को सुन रहे थे। श्रोताओं, क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि हाथ में कोई रैपर या पन्नी हो और आसपास कोई डस्टबिन ना दिखे तो बस वहीं जमीन पे डाल दिया? सच कहूं तो ये आदत इतनी आम हो चुकी है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम अपने घर में कागज का टुकड़ा भी फर्श पर नहीं गिरने देते, लेकिन बाहर निकलते ही वो सतर्कता कहीं गुम हो जाती है। जिसका एक छोटा सा हल है, बस एक इतना सा हल है कि बस उस पन्नी या रैपर को जेब में या बैग में रख लीजिए और अगला डस्टबिन मिलने तक उसमें डाल दीजिए। ना कोई मेहनत, ना कोई खर्चा, बस सिर्फ एक आदत जो थोड़ी सी सजगता मांगती है। और सोचिए, अगर हर कोई सिर्फ इतना ही कर ले तो हमारे पार्क, बाजार, रेलवे स्टेशन कैसे बदल जाएंगे? सफाई एक कर्मचारी या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वो हर उस हाथ की जिम्मेदारी है जो कचरा पकड़े हुए है। तो अगली बार जब हाथ में कुछ फेंकने लायक हो तो एक पल रुकिए, डस्टबिन तक का छोटा सा सफर पूरा कीजिए और देश की सेवा में जुट जाइए।

लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी बहारों के सपने। तो दोस्तों आज की ये 50 मिनट की सोहबत भी अब अपने आप में एक पूरा सफर बन चुकी है। कुछ बातें दिल को छू गईं, कुछ ने सोचने पर मजबूर कर दिया और कुछ ने बस यूं ही होठों पर मुस्कुराहट ला दी। सच कहूं तो ये बातचीत की यही तो खूबसूरती थी कि हम हमेशा अपने बातचीत के पीछे कुछ ना कुछ छोड़ जाते हैं, कोई ख्याल, कोई एहसास जो शायद फिर याद आ जाता है। तो जब भी ऐसा हो तो समझिए कि हम आपके साथ हैं। तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपनों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइएगा और हाँ, अगली बार फिर मुलाकात होगी तो श्रुतिपुरी को दीजिए घर आंगन से अनुमति। नमस्कार।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधा कृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है एकजुट संकल्प साझा जिम्मेदारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी राज्यों से अपील करते हुए कहा है कि अगले फिल्म पुरस्कार के लिए अपने सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल को मनोनीत करें।
1: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दें। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करें। तो जो राज्य का प्रपोजल सिलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
0: सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की यह अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। कर्मचारियों ने बैंकों में कामकाज सप्ताह में 5 दिन करने और प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को वापस लेने की 2 प्रमुख मांग रखी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि विस्तृत चर्चा के बाद सरकार ने उनकी एक मांग मानते हुए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। निर्वाचन आयोग ने 11 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश की 10 और एक उत्तराखंड की सीट शामिल है। आयोग ने पश्चिम बंगाल में राज्यसभा की 1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस सांसद रुक्मिणी मल्लिक के इस्तीफे के कारण ये सीट रिक्त हुई थी। नामांकन प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी, मतदान 16 अक्टूबर को होगा। आयोग ने उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 11, बिहार की 8, महाराष्ट्र की 5 और कर्नाटका की 4 सीटों के लिए भी चुनाव की घोषणा की है। इन चुनावों के लिए नामांकन 29 सितंबर से शुरू होगा, 23 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: भारत ने मलेशिया में अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वे रोजगार की तलाश के लिए 30 दिन की वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का इस्तेमाल न करें। कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया पर जारी एक परामर्श में कहा कि मलेशिया पहुंचने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उच्चायोग ने कहा कि बेईमान एजेंट नौकरी के झूठे वादे कर भारतीय नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने T20 क्रिकेट के फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 217 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका ने ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 6 विकेट पर 52 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, कभी कभी कोई पुरानी फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं होती, वो अपने साथ एक पूरा दौर लेकर आती है। एक दौर जब मोहब्बत को कहने के लिए लंबी लंबी बातें नहीं, बस एक गीत काफी हुआ करता था। आज एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम लौट रहे हैं 1957 की ओर, एक ऐसी फिल्म की तरफ जिसका नाम ही अपने आप में फूलों जैसी खुशबू लिए हुए है, चंपा गली। जी हाँ, ये फिल्म है जिसको हम फिल्मी दुनिया का दरवाजा खोलने जा रहे हैं, कार्यक्रम के साथ में अर्चना गोयल। नमस्कार दोस्तों।

कितना खूबसूरत है ना ये गीत। इस गीत के शब्दों में जैसे 50 के दशक के सिनेमा की पूरी मासूमियत समाई हुई है। इस गीत को लता मंगेशकर ने आवाज दी थी और संगीतकार थे हेमंत कुमार, गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे। हेमंत कुमार का संगीत अपने आप में एक खास पहचान रखता था। सादगी, मिठास और धुन में ऐसी सहजता कि गीत सुनते हुए लगता था कि जैसे धुन बहुत पहले से हमारे भीतर कहीं मौजूद थी। फिल्म में थे भारत भूषण, सुचित्रा सेन, प्राण, शोभा खोटे, मुबारक, एसएल पुरी और मुमताज बेगम जैसे कलाकार। फिल्म का निर्देशन किया था नंदलाल जसवंत लाल ने। फिल्म की कहानी एक बंजारा कबीले के इर्द गिर्द घूमती है जिसमें बांसुरी की धुन, प्यार और सांप के काटने जैसे ड्रामेटिक ट्विस्ट शामिल थे। आपको बता दें कि निर्देशक नंदलाल इससे पहले नागिन, अनारकली, सनम, आम्रपाली जैसी हिट फिल्में दे चुके थे।

चंपा कली को 1957 की हिंदी फिल्मों की सूची में रोमांटिक फिल्म के रूप में दर्ज किया गया। फिल्म में भारत भूषण ने माधो और सुचित्रा सेन ने राजू की भूमिका निभाई। भारत भूषण उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिनके अभिनय में रोमांस के साथ साथ एक नरम भावनात्मक रंग दिखाई देता था। दूसरी ओर सुचित्रा सेन भारतीय सिनेमा, खासकर बंगाली सिनेमा की बेहद महत्वपूर्ण अभिनेत्रियों में उनका नाम लिया जाता है। उनके करियर का दिलचस्प पहलू ये भी है कि उन्होंने हिंदी फिल्मों में बहुत अधिक काम नहीं किया, लेकिन जिन फिल्मों में नजर आई उनमें उनकी स्क्रीन उपस्थिति अलग ही दिखाई देती थी। चंपाकली में उनका किरदार राजू का था। यही वजह है कि आज जब हम इस फिल्म के गीत सुनते हैं तो वे सिर्फ पुराने गीत नहीं लगते, वे हमें सुचित्रा सेन, भारत भूषण के उस दौर की सिनेमाई जोड़ी की याद दिलाते हैं।

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से। हमारी आज की फिल्म है चंपा कली और कार्यक्रम के साथ मैं हूं अर्चना गोयल।
1: Hey guys! आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
3: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, चंपा कली से जुड़ी एक ऐसी जानकारी जो इस फिल्म के संगीत को और रोचक बना देती है। फिल्म में ओ ग्वालिन क्यों मेरा मन मोहम्मद रफी साहब की आवाज में है। इस गीत को लेकर पुराने गीत संग्रह में एक दिलचस्प टिप्पणी मिलती है कि इसे भारत भूषण और सुचित्रा सेन पर फिल्माया गया। इसे सुनकर यह बात खास तौर पर ध्यान खींचती है कि भारत भूषण के लिए इस फिल्म में हेमंत कुमार की अपेक्षा रखने वाले श्रोताओं को यहां रफी साहब की आवाज सुनाई देती है। यही पुराने सिनेमा का आकर्षण है। ये भी गौर करने वाली बात है कि हेमंत कुमार के संगीत में अलग अलग भावों को अलग अलग गायकी के रंग से सजाया गया।

मोहम्मद रफी साहब के गाए इस खूबसूरत गीत के बाद अब बढ़ते हैं आप सबके मैसेजेस पर। हमें बहुत सारे ईमेल्स मिले हैं और अब बढ़ते हैं मेल्स की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह का। और आप हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। पीपरिया से आप हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा गुप्ता और शिप्रा गुप्ता। पलारी छत्तीसगढ़ से हमसे जुड़े हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, पुना राम देवांगन और कृष्णा देवांगन। आप हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़, कमल सहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, दिशानी और निर्मित आहूजा। और ये हैं फाजिल का पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, लाडी खेड़ा, शालिनी, देवांशी, वाणी खेड़ा और आर बी खेड़ा, जीवन सिंह बूक और उनके परिवार के सभी लोग। और ये मैसेज हमें भेजा है ग्राम नाहर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा प्रांचल समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। आपके साथ ही हैं छग्गा राम साहू और ये लिख रहे हैं कि फिल्म चंपाकली की मधुर सदाबहार गीत संगीत कहानी और फिल्म से जुड़ी रोचक बातों का आनंद ले रहे हैं और प्रोग्राम की शानदार मनभावन लाजवाब पेशकश के लिए इन्होंने हमें बधाई दी है। तो जगाराम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है। और हमसे जुड़े हैं गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और ये लिख रहे हैं कि आज की फिल्म चंपा कली की कहानी सुन रहे हैं और इनको बहुत अच्छा लग रहा है जो जानकारी आप दे रहे हैं। तो राजकुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अली खान हमें मैसेज कर रहे हैं लेकिन इनका पता नहीं है कि ये कहां से हमें मैसेज कर रहे हैं। और आप हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, तस्वीर जस्सी, सीता और गीता। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव और ये लिख रहे हैं कि चंपा कली की बारे में सुंदर जानकारी देने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छेपा, कपिल छेपा, ईशान छेपा और पूजा परिहार और ये लिख रहे हैं कि आज आप चर्चा कर रहे हैं फिल्म चंपा कली के बारे में, बेहतरीन बातें बताई, रोचक किस्से, कहानी और नगमे भी सुनवा रहे हैं, बेहतरीन जानकारी हमें मिल रही है, गीत छुप गया कोई रे बहुत सुना चाहता है, बेहतरीन प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धर्मेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप हैं सुदर्शन मुखी

टाटा मुखी सिमरत मुखी शांति नगर सोनीपत से। और अब बढ़ते हैं फिल्म की तरफ। चंपाकली की चर्चा हेमंत कुमार के बिना अधूरी है। उन्होंने फिल्म का संगीत तैयार किया। गीतों में विरह, प्रेम, सावन, शरारत, भक्ति, कई अलग अलग भाव दिखाई देते हैं। जरा कल्पना कीजिए 1957 का समय, न आज जैसी रिकॉर्डिंग तकनीक, न डिजिटल एडिटिंग, न ऑटोट्यून, फिर भी आवाजों में जो गर्माहट थी वो आज भी कानों से सीधा दिल तक पहुंचती है।

छूट गया ना चांद का ये टुकड़ा छुपाए से।

और अब बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। ये मैसेज हमें मिला है बिरम घाट गुजरात से अजीत भावसार और प्रमिला भावसार का। ये लिख रहे हैं कि इस फिल्म में दिग्गज संगीतकार रवि की शुरुआत हुई। इस फिल्म का मुख्य संगीत मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार ने दिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में उनके असिस्टेंट साहिक के रूप में रवि काम कर रहे थे। रवि ने बाद में चलकर हिंदी सिनेमा को स्वतंत्र रूप से चौधरी का चांद और वक्त जैसे ढेरों यादगार गाने दिए। फिल्म में महान अभिनेता प्राण ने वीरा नाम के विलेन का किरदार निभाया था, जो बाद में कहानी में लव ट्रायंगल और ड्रामा पैदा करता है। तो अजीत जी, आपने ये बहुत सुंदर जानकारी हमें दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप हैं संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया, बागपत उत्तर प्रदेश से। और ये मैसेज हमें मिला है नलेश्वर नगर नरेवल नरवेल महाराज से। पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल

मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष। आप हैं फारूक अली खान, इनका भी जगह का नाम नहीं मालूम चल पाया है, और आप हैं मेरठ से कविता और दिग्दर्शन गॉड, और इनको गाने और कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहे हैं। दिग्दर्शन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। छत्तीसगढ़ पलारी से आप हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा और अन्नपूर्णा वर्मा। खजाना गेट अमृतसर से आप हैं प्रेम सागर और शुभलता। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान। भगवतपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन और नेहा जगदीश देवांगन। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से हमारे साथ जुड़े हैं अशोक कुमार सहगल। तो आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े और अपनी प्रतिक्रिया दी। और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। दोस्तों, चंपा कली के गीतों की सूची पर नजर डालें तो हमें एक दिलचस्प बात दिखेगी, वो है अलग अलग भाव यानी विविधता के गीत। कहीं मन की उमंग, कहीं इंतजार और पुकार, कहीं सावन और प्रेम, शरारत के साथ कृष्ण भक्ति और भक्ति का रंग। एक ही फिल्म में संगीत के इतने अलग अलग भावों का होना उस दौर के फिल्म संगीत की व्यापकता को दिखाता है।

तो दोस्तों, 1957 की फिल्म चंपा कली हमें सिर्फ एक फिल्म की याद नहीं दिलाती, हम उस दौर के फिल्म संगीत की एक झलक देखते हैं, जब गीत कहानी का हिस्सा हुआ करते थे, जब राजेंद्र कृष्ण जैसे गीतकार शब्दों से दृश्य रचते थे और हेमंत कुमार उन शब्दों को धुन देते थे। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मन्ना डे और हेमंत कुमार जैसे गायक उन भावनाओं में आवाज भर देते थे। शायद 6-7 दशक गुजर जाने के बाद भी जब कोई गीत रेडियो पर कहता है छुप गया कोई रे, तो हमारे भीतर कोई पुरानी खिड़की खुल जाती है। तो ये था हमारा आज का एक ही कलाकार एक ही फिल्म से कार्यक्रम। फिलहाल अपनी दोस्त अर्चना गोयल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 1:40 होने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है।

0: प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। एशियाई खेल 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराया। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 11,000 रन पूरे करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बनी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2026 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने जल के विवेकपूर्ण उपयोग और संरक्षण पर जोर दिया। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर सभी संबंधित पक्षों के बीच विचार विमर्श का महत्वपूर्ण मंच है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। उन्होंने जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है। उन्होंने कहा कि भावी पीढ़ियों को पानी की कीमत समझनी होगी।
1: Water should be used preciously where the requirement should be met with the smallest possible quantum of water. This Water Week celebrations have proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
0: जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि सरकार देश के हर नागरिक को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की नींव है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने जल प्रबंधन को जन भागीदारी से जोड़ने, इसे जन आंदोलन बनाने पर लगातार बल दिया है। भारत के लिए जल सुरक्षा विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव है। पानी का संबंध हमारी खेती, भोजन, स्वास्थ्य, उद्योग, ऊर्जा और पर्यावरण से भी जुड़ी हुई है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल सुरक्षा साझा जिम्मेदारी है, जिसके लिए मजबूत व्यवस्था, वैज्ञानिक समाधान और जनभागीदारी आवश्यक है। श्री मोदी ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल का लिखा एक लेख साझा किया। उन्होंने कहा कि श्री पाटिल ने जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, जल संरक्षण और तकनीक आधारित समाधानों के जरिए जल प्रबंधन को जलवायु अनुकूल बनाने के भारत के प्रयासों पर लिखा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लेख बताता है कि राज्यों और समुदायों के निरंतर प्रयासों के साथ जनभागीदारी से भावी पीढ़ियों के लिए सतत जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। एक रिपोर्ट।
3: इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुख भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है सामूहिक संकल्प, साझा दायित्व। सम्मेलन में स्वापक नियंत्रण 2026-2029 के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में कार्यबल की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। साथ ही मादक पदार्थों की आपूर्ति, मांग तथा उससे होने वाले नुकसान को कम करने में केंद्र सरकार के उपायों को और मजबूत करने की दिशा में उपयुक्त नीतियां अपनाने पर ध्यान दिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों से देश के युवाओं को बचाने की दिशा में मिशन मोड में काम कर रही है। मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और यह नशा मुक्त भारत के निर्माण के बिना पूरा नहीं किया जा सकता। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: गृहमंत्री ने स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया। उन्होंने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 4 टेलीविजन विज्ञापन जारी किए। श्री शाह ने लखनऊ में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के नए क्षेत्रीय कार्यालय और आवासीय परिसर तथा देहरादून में नए क्षेत्रीय कार्यालय परिसर की आधारशिला रखी। सरकार ने बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने और बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने का आग्रह किया है। सरकार की ये अपील 28 से 30 सितंबर तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन तथा कुछ अन्य यूनियन तथा संघों की 3 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर की गई है। एक रिपोर्ट। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार फीचर फिल्म, गैर फीचर फिल्म तथा सिनेमा लेखन समेत विभिन्न श्रेणियों में दिए जाते हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति वरिष्ठ फिल्म अभिनेता अनंत नाग को वर्ष 2024 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी प्रदान करेंगे।
2: ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह के लिए भव्य मंच सज चुका है। यह समारोह वर्ष 2024 की सर्वश्रेष्ठ सिनेमाई कृतियों को सम्मानित कर रहा है। इस वर्ष की प्रमुख घोषणाओं में आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है, जबकि इसी फिल्म के लिए यामी गौतम ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जीता है। मलयालम फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए ममूटी और हिंदी फिल्म चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार हासिल किया है।
3: कि मुझे 72वें नेशनल अवार्ड में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सम्मानित किया जा रहा है और वो भी मेरे बहुत ही करीबी फिल्म, दिल के बहुत करीब है मेरे फिल्म चंदू चैंपियन, एंड बहुत ही बड़े लेवल पे यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। मेरा पहला नेशनल अवार्ड है तो मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ।
2: राजकुमार पेरियासामी को फिल्म अमरन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 AD को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म चुना गया है। रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक चुना गया है। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार को सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म, संताली फिल्म आंगन के लिए रविराज मुर्मू को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक और आनंद एल राय को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। एकता नगर से चिराग भुरनिया के साथ अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद में आज संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के निकट एकता नगर में राष्ट्रपति और फिल्म जगत की प्रमुख हस्तियों की मौजूदगी में पुरस्कार समारोह आयोजित होने से देश के पर्यटन स्थलों को वैश्विक पहचान मिलेगी। श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से अब राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर आयोजित किए जाएंगे।
4: हमारा प्रयास है कि नेशनल फिल्म अवार्ड को एक कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकालकर इसको जनता के बीच में पहुंचाएं और टूरिज्म के माध्यम से आगे बढ़ाएं। तो मैं सभी राज्यों से भी निवेदन करूंगा, इस फिल्म अवार्ड के बाद में का जो नेशनल फिल्म अवार्ड हमें करना है उसके लिए सभी राज्य जो सबसे अच्छा टूरिज्म स्पॉट है उस टूरिज्म के डेस्टिनेशन को अपना प्रपोजल दे। हर तरह की चीज एक 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट का प्लान बना के उसको एग्जीक्यूट करे तो जो राज्य का प्रपोजल सेलेक्ट होगा अगला नेशनल फिल्म अवार्ड उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे होगा।
1: केंद्र शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे प्राकृतिक खेती के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में लाया गया है।
5: सिक्किम रहस्यमय झीलों और बर्फ से ढके पहाड़ों के अलावा बड़े पैमाने पर फसलों की पैदावार के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। सिक्किम को 2016 में पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था और ये बड़ी इलायची, अदरक और कुट्टू जैसी फसलों के लिए जाना जाता है। सिक्किम में देश की बड़ी इलायची का सबसे अधिक लगभग 90% उत्पादन होता है। इसे ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में निर्यात भी किया जाता है। सिक्किम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने अहम भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2021 में सिक्किम का दौरा किया और कहा,
6: हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए

0: कहा जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
1: सिक्किम में बड़ी इलायची के अलावा कुट्टू भी बड़े पैमाने पर उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। सिक्किम की तीसरी सबसे बड़ी फसल होने के कारण कुट्टू को GI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है। समय के साथ और केंद्र सरकार, ICAR, सिक्किम तथा राज्य सरकार के कृषि विभाग के मजबूत सहयोग से सिक्किम में प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। गंगटोक से मैं नाग चैटर्जी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
2: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में भी तेज बारिश की संभावना है। कर्नाटका, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तेलंगाना में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। दिल्ली में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पश्चिम मध्य और उससे सटे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में अत्यधिक दबाव में बदल सकता है।
4: उड़ीसा में कल और परसों कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने का अनुमान लगाया है। साथ ही आज और इस शुक्रवार को भी भारी बारिश की संभावना है। गहरे दबाव के कारण इस दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की भी आशंका है। IMD ने संवेदनशील जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है और दक्षिण उड़ीसा तट पर तेज हवाएं चलने की चेतावनी दी है। राज्य सरकार ने शेल्टर होम, बचाव दल और मशीनरी तैयार रखी है और जिला प्रशासन को संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है। मछुआरों को भी समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: जापान एशियाई खेल 2026 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारतीय महिला टीम ने आज T20 क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को 147 रन से हराया। ये एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम का लगातार दूसरा स्वर्ण पदक भी है। 217 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 16वें ओवर में मात्र 69 रन पर सिमट गई। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने शानदार 79 रन की पारी खेली। इस मैच में उन्होंने 11,000 रन पूरा कर इतिहास रच दिया है। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वे विश्व की पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के एशियन खेल 2026 में स्वर्ण पदक जीतने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के मिक्स मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने पर सुचिका तरियाल को बधाई दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह जल प्रबंधन की चुनौतियों पर विचार विमर्श करने के लिए सभी हितधारकों को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की समस्या से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के 30वें राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में शुभारंभ किया। सरकार का बैंक कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: दरअसल पैंते आकाशवाणी दिल्ली का नेशनल न्यूज सर्विस प्रोग्राम लाइन मीडियम वेविका चेस आकाशवाणी कारगिली का जिरेन्युत वक्सपो निमेतुसुत निज नफेत संसु कसत एनसीआरटी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम मजत उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
0: और मैं हूं अजीत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: अपनी गलती स्वीकारना और सुधारना मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी है। और अब सुनिए संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
0: तो हमें पहला संदेश मिला है अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा बेबी और आराध्या साहू।
0: और तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान।
2: ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया।
0: और मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतनमाला सुरलकर।
2: आप सबके सुंदर संदेशों के लिए एक बार फिर से हमारा आभार। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की दुनिया की कई लोक परंपराओं पर, जिनमें महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण के संदेश छिपे हुए थे। चलिए आज करते हैं थोड़ा सा विषयांतर।
0: जी, थोड़ा सा विषयांतर। श्रोताओं, इस सप्ताह हम बात करेंगे दुनिया के विभिन्न आविष्कारों की और जानेंगे कि कैसी परिस्थितियों में उनका आविष्कार हुआ।
2: अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे सरल, सबसे लोकप्रिय और शायद सबसे प्यारा वाहन कौन सा है, चलिए मैं आपको एक मजेदार हिंट देती हूँ। ट्रेन ट्रेन ट्रेन ट्रेन
0: ट्रेन ट्रेन ट्रेन, बिल्कुल सही समझा आपने श्रोताओं, वो है साइकिल। देखिए ना, ना तो पेट्रोल चाहिए, ना डीजल, ना इंजन का शोर और ना प्रदूषण।
2: जी,
0: बस दो पहिए, थोड़ा सा संतुलन और पैरों में ताकत, है ना?
2: लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी प्यारी साइकिल की कहानी है आज से लगभग 200 साल से भी अधिक पुरानी। तो आइए चलते हैं आज से लगभग 200 वर्ष पीछे, 1817 के जर्मनी में। बता दें कि दुनिया में आने जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन थे घोड़ा और घोड़ा गाड़ी।
0: लेकिन श्रोताओं, 1815 की बात है, एक भयंकर वैश्विक घटना हुई और वो थी इंडोनेशिया के माउंट तंबोरा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट। इसके प्रदूषण से दुनिया के कई हिस्सों में मौसम और फसलों पर बुरा असर पड़ा और इसके कारण घोड़ों के लिए चारा भी महंगा और दुर्लभ हो गया।
2: ऐसे समय में जर्मनी के एक आविष्कारक कार्ल वॉन ड्राइस ने सोचा, क्या ऐसा कोई वाहन बनाया जा सकता है जिसे इंसान खुद चला सके और जिसके लिए घोड़े की जरूरत न पड़े। उसने बहुत शोध किए, नवाचार किया और फिर परिणाम स्वरूप सामने आया एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन।
0: जी, एक अजीब सा दो पहियों वाला वाहन। पता है श्रोताओं कैसा था वो वाहन? सचमुच अजीबो गरीब। एक लकड़ी के फ्रेम में आगे पीछे दो पहिए लगा दिए गए और लकड़ी के फ्रेम के ऊपर वाले डंडे में बैठने के लिए एक छोटी सी सीट लगा दी गई।
2: न उसमें पैडल थे, न चेन, न ब्रेक। सवार उस पर बैठता और अपने पैरों से जमीन को पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ता। सामने कोई आता तो चीखता, हटिए सामने से,
0: हटिए सामने से। खैर श्रोताओं, इसके द्वारा मनुष्य ने धीरे धीरे संतुलन बनाना सीखा। धीरे धीरे वो ढलानों में पांव साइकिल के फ्रेम पर रख लेता और दूर तक लुढ़कता चला जाता।
2: जी,
0: तो इसे जर्मन भाषा में कहा गया ड्राइजीन, जिसका अर्थ होता है मूविंग मशीन।
2: तो साथियों, आज की साइकिल का पहला रूप ऐसा था जिसे चलाने के लिए पैडल ही नहीं थे।
0: जरा सोचिए, साइकिल पर बैठे हैं और पैर जमीन पर, धक्का दिया और चल पड़े।
2: जी,
0: यानी एक तरह से कह सकते हैं पैदल चलते हुए वाहन चलाना, है ना मजेदार बात?
2: बिल्कुल। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, समय आगे बढ़ा और कुछ और आविष्कारकों ने इस दो पहिया मशीन में बदलाव शुरू किए। 1860 के दशक में फ्रांस में पियरे और अर्नेस्ट मिचॉक्स ने पहिए में पैडल लगाने का महत्वपूर्ण प्रयोग किया।
0: आशुतोष, इसके बाद अब सवार को बार बार जमीन पर पैर मारने की जरूरत नहीं थी।
2: जी,
0: पैडल घुमाइए और पहिया घूमने लगता।
2: बिल्कुल।
0: लेकिन इस दौर की साइकिलें आज की साइकिलों से काफी अलग थी।
2: जी,
0: इनमें आगे का पहिया बहुत बड़ा होता था और पीछे का पहिया छोटा।
2: और फिर आया वो बदलाव जिसने साइकिल को आम लोगों के लिए कहीं अधिक सुरक्षित बना दिया। 1880 के दशक में विकसित हुई एक और साइकिल, इसमें दो लगभग समान आकार के पहिए थे, पैडल चेन से जुड़े थे और सवार अपेक्षाकृत नीचे बैठता था। यही वो डिजाइन था जिसने आधुनिक साइकिल की नींव को मजबूत किया।
0: तो श्रोताओं, फिर धीरे धीरे साइकिल सिर्फ एक वाहन ही नहीं रही, ये स्वतंत्रता का प्रतीक बनी।
2: जी,
0: यूरोप और अमेरिका में लोग साइकिल से काम पर जाने लगे। महिलाओं के लिए भी साइकिल ने सामाजिक स्वतंत्रता के नए रास्ते खोले। लंबी दूरी तय करना आसान हुआ और लोगों की दुनिया जैसे थोड़ी बड़ी हो गई।
2: और फिर साइकिल 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में, यानी 1880 से 1890 के

0: शक में भारत में पहुंची और धीरे धीरे शहरों और गांवों की जिंदगी का हिस्सा बन गई। कुछ समय तक स्कूटर और बाइक के आने से इसकी लोकप्रियता थोड़ी जरूर कम हुई थी, लेकिन एक बार फिर से इसकी लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि ये जरूरत की सवारी तो थी ही, अब सेहत के लिए भी जरूरी सवारी बन गई है।
1: जी, ये जरूरत की सवारी तो थी ही, लेकिन अब
0: सेहत के लिए जरूरी सवारी बन गई है।
1: तो साथियों, आज साइकिल कई नए नए रूपों में हमारे सामने है। अब बैटरी की मदद से लोग लंबी दूरी भी आसानी से तय कर रहे हैं।
0: जी,
1: मैं तो यही कहूँगा, ट्रिन ट्रिन ट्रिन, जिंदगी चलने का नाम है।
0: चलते रहिए, अपने अपनों को आवाज लगाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।
1: तो साथियों, ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी सबकी प्यारी साइकिल के बारे में। आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: साइकिल का आविष्कार किसने और कब किया? आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है खेल संध्या।
0: कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता पर आधारित इस कार्यक्रम में एक सुंदर गीत के माध्यम से बच्चों को हमारे परंपरागत खेलों के बारे में जानकारी दी गई है। और ये संदेश दिया गया है कि अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए बच्चों को खेलना कूदना बहुत जरूरी है।
1: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
1: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
1: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है, जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। अभी आपने सुना कार्यक्रम संध्या गीत। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा।

0: کیوں نہ اپنائیں خوشیاں اپنا کر منو درپن۔ کال کریں 844-844-0632 پر اور پائیں NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए अब सुनते हैं एक अंग्रेजी का सुंदर गीत और इसका शीर्षक है इफ यू आर हैप्पी।
2: गतिविधि आधारित इस गीत में भिन्न भिन्न शारीरिक भाव भंगिमाओं के द्वारा बताया गया है कि हमें जीवन की हर परिस्थिति में प्रसन्न और आनंदित रहना चाहिए। बच्चों को इस गीत के द्वारा कुछ हल्की शारीरिक गतिविधियां करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है।

0: Diksha, Digital Infrastructure for School Education, an initiative of the Ministry of Education, Government of India, brought to you by the National Council of Educational Research and Training.
1: Diksha, Diksha for Empowering Education.
2: और अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है चतुर्मूर्ख।
3: ये कार्यक्रम एक हास्य प्रधान कहानी पर आधारित है जिसमें एक मूर्ख को बुद्धिमान समझ लिया जाता है और जब धीरे धीरे उसकी कलाई खुलने लगती है तो लोग समझ जाते हैं कि किसी के बारे में कोई राय तुरंत नहीं बनानी चाहिए।
2: चतुर्मूर्ख।
4: तीन मूर्ख थे, वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में ही रात हो गई। वे पास के एक गांव में रुक गए। उन्हें भूख भी लगी थी। मांगने पर उन्हें गांव में एक घर से चावल मिला, दूसरे घर से दूध मिला, तीसरे घर से चीनी भी मिल गई। तीनों ने मिलकर खीर बनाई। भर पेट खाने के बाद भी थोड़ी सी खीर बच गई। बची हुई खीर कौन खाएगा? इस बात पर बहस छिड़ गई। बहस के बाद तय हुआ कि रात में जो सबसे अच्छा सपना देखेगा वही खीर खाएगा। तीनों लेट गए। वे

0: आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगे। दो तो जल्दी सो गए। तीसरे को नींद न आई। वो सोचता रहा।
1: कौन सा सपना देखूं जिससे खीर मिले।
0: धीरे धीरे सवेरा होने लगा। न तो वो सोया और न ही उसने कोई सपना देखा, लेकिन वो चतुर था। वो चुपके से उठा और सारी खीर खा गया। खीर खा लेने पर उसे झटपट नींद आ गई। दोनों मूर्ख बड़े सवेरे ही जाग गए। उनके दिमाग में सपने की बात ही बार बार आ रही थी। उन्होंने तीसरे को भी जगाया।
2: अरे उठो,
3: उठो, उठो,
2: अरे उठो,
0: हाथ मुंह धोकर वे एक दूसरे से सपनों के बारे में पूछने लगे। पहले ने कहा,
2: आहा, मैं तो सपने में स्वर्ग पहुंच गया था। वहां पर देवता मेरी सेवा कर रहे थे।
4: अच्छा।
2: हाँ। परियां, परियां नाच रही थी। और हाँ, आहा, खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें थी। वाह वाह वाह वाह वाह, बड़ा आनंद आ रहा था। वाह वाह वाह वाह।
0: दूसरे ने कहा,
5: मैं तो सपने में गढ़वाल का राजा बना।

0: कर चाकर भेज। मैं दरबार में सिंहासन पर बैठा था,
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बगल में महारानी थी।
1: ओ
0: लोग झुक झुक कर सलाम कर रहे थे, बड़ा अच्छा दृश्य था।
2: अब तीसरे की बारी आई। उसने तो कोई सपना देखा नहीं था, ऊपर से खीर भी चट कर गया था। पहले तो वो घबराया, फिर कुछ सोचकर बोला,
1: मेरे सपने को मत पूछो। मेरे सपने में एक काला कलूटा भूत आया,
3: भूत
1: उसका बहुत बड़ा शरीर था, चेहरा डरावना था। आते ही उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और डंडे से पीटने लगा। मैंने रोते हुए उससे पूछा,

0: मुझे क्यों मार रहे हो भाई?
1: उसने बिगड़ कर कहा, अभी तक तुमने खीर क्यों नहीं खाई? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो उठो और सारी खीर खाओ।
2: मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था।
1: उसी समय उसने मेरी गर्दन पकड़ी और खीर के पास ले जाकर कहा,
0: चलो
1: सीधी तरह खीर खाओ,
2: क्या
1: नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा।
2: मैं क्या करता, मुझे खीर खानी पड़ी।
3: खीर खा गए तुम? ऐसे
4: ये सुनकर दोनों मूर्ख गुस्से में आ गए और बोले,
5: तो क्या तुमने खीर खा डाली?
2: नहीं खाता तो क्या करता, अपनी जान से हाथ धोता।
3: तुम झूठ बोलते हो।
5: जब भूत मार रहा था तब तुमने हम लोगों को क्यों नहीं जगाया?
2: जगाता कैसे, तुम में से एक स्वर्ग का आनंद ले रहा था और दूसरा महाराजा बन गया था। मैं तुम्हें वहां से कैसे बुलाता? अगर बुलाता तो तुम लोग कहते कि मैं तुम्हें सपने में भी सुखी नहीं देखना चाहता, इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं जगाया।
4: ये सुनकर दोनों मूर्ख दांत पीस कर रह गए।
6: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो उमंग की तकनीकी टीम यानी जगबंधु, चेतना, अर्शद, कुसुमलता और वीरेंद्र के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: दर्शक पैंतीस एनसीआरटी स्पॉन्सर प्रोग्राम यानी न्यूत पिन उमंग मीडिया वेविका अचेस आकाशवाणी कारगिलिकना जरिन्यूत।

0: मीडियम वेव 1,071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज सोने आईआर और डीडी फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। सपहर के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि पानी से मुतालिक हफ्ता एक ऐसा अहम प्लेटफॉर्म है जहां सभी मुतालिका फरीकेन पानी के बंदोबस्त में दरपेश चैलेंजों से निपटने पर बातचीत के लिए यकजा हो सकते हैं। हुकूमत ने बैंक मुलाजमीन से हड़ताल पर जाने से गुरेज करने और अपने मामलों को बातचीत के जरिए हल करने की अपील की है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम केवड़िया में एकता नगर के मुकाम पर 72वीं कौमी फिल्म अवार्ड्स अता करेंगी। वजीर खारजा एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास के मौके पर फ्रांस, इक्वाडोर, स्लोवाकिया और स्विट्जरलैंड के वजरा खारजा के साथ बातचीत की है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में श्रीलंका को हराकर सोने का पहला तमगा जीता है। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंदाना ने तारीख रकम की है, वो ऐसी पहली खातून क्रिकेट खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने बैन अवी क्रिकेट में अपने 11,000 रन पूरे कर लिए हैं। अब खबरें तफसील से। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली में पानी से मुतालिक नवे भारत बैन अवी हफ्ते 2026 का अफ्ताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने पानी के कम से कम इस्तेमाल पर जोर दिया और खासतौर पर कहा कि इसका तहफ्फुज़ किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी

सुखविंदर सिंह और साथियों से अभी आप सुन रहे थे कुर्बानी फिल्म थी हल्ला बोल। और ये जब सुनिए पवित्र पापी फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी का गाया हुआ, नगमा निगार मौसीकार प्रेम धवन। इस नगमे में भी रूहानी कैफियत वही है जो थी गुरबानी में।

ये थी मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशात आप सुन रहे हैं मीडियम वेव से 1000 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटी फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम अदब नुमा। सभी सामईन को नईम का आदाब। चले आए हैं जनाब एक पंथ दो काज करने। अब एक पंथ तो ये है कि आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम अदब नुमा, और दूसरा काज ये है जनाब कि आपसे इस बहाने हो जाती है मुलाकात, तो मुलाकात करने भी चले आए हैं। तो दोनों काम कर लेते हैं और प्रोग्राम तो आपको हम सुनवाएंगे ही अदब नुमा। और आप तो जानते हैं अदब नुमा में हम आपके लिए कलाम शायर लेकर आते हैं और इसके अलावा अफसाना भी आपको सुनवाते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज थोड़ा सा मूड बनाया जाए और आपको पहले एक गजल सुनवा दी जाए। तो चलिए गजल सुन लेते हैं। और

0: तो जनाब इमान, ये गजल आपने सुन ली, उम्मीद करते हैं कि ये गजल आपको जरूर पसंद आई होगी। और अब इसी सिलसिले को जारी रखते हुए, चूंकि मूड बन गया है शेर व शायरी का, तो कलामी शायर सुनवा देते हैं। और कलामी शायर के तहत आज हम आपकी नजर कर रहे हैं जनाब फरियाद आजर का कलाम। तो आइए सुनते हैं फरियाद आजर का ये कलाम।
1: दिल ने अच्छाई बुराई को बस इतना समझा, दिल ने अच्छाई बुराई को बस इतना समझा, यानी गर खुद को बुरा समझा तो अच्छा समझा। दिल ने अच्छाई बुराई को बस इतना समझा, यानी गर खुद को बुरा समझा तो अच्छा समझा, और हम समझने लगे मुजरिम है हमी में कोई। हम समझने लगे मुजरिम है हमी में कोई, यानी हादसा ऐसा रचाया गया सोचा समझा। हम समझने लगे मुजरिम है हमी में कोई, हादसा ऐसा रचाया गया सोचा समझा, और चारा भी न था इसके अलावा कोई। और चारा भी न था इसके अलावा कोई, हमने हर दौर में कातिल को मसीहा समझा। और चारा भी न था इसके अलावा कोई, हमने हर दौर में कातिल को मसीहा समझा। अब समुंदर पे वो चलता है तो हैरत कैसी, अब समुंदर पे वो चलता है तो हैरत कैसी, उम्र भर उसने शराबों को ही दरिया समझा। अब समुंदर पे वो चलता है तो हैरत कैसी, उम्र भर उसने शराबों को ही दरिया समझा, और मुझको सैलाब ने समझाया जमी प्यासी थी। मुझको सैलाब ने समझाया जमी प्यासी थी, जलजला आया तो मैंने तेरा गुस्सा समझा। मुझको सैलाब ने समझाया जमी प्यासी थी, जलजला आया तो मैंने तेरा गुस्सा समझा, और किस्से दर्द सुना सबने मेरा सच है मगर, किस्से दर्द सुना सबने मेरा सच है मगर, ये भी सच है कि सभी ने इसे किस्सा समझा। किस्से दर्द सुना सबने मेरा सच है मगर, ये भी सच है कि सभी ने इसे किस्सा समझा, और मात दी मैंने जो शैतान को भी अय्यारी में, मात दी मैंने जो शैतान को भी अय्यारी में, फिर मुझे सारे जमाने ने फरिश्ता समझा। मात दी मैंने जो शैतान को भी अय्यारी में, फिर मुझे सारे जमाने ने फरिश्ता समझा। और दूसरी गजल के चंद अशआर में पेश कर रहा हूं कि मैंने ही खुद को जहां में न कहीं का रखा, मैंने ही खुद को जहां में न कहीं का रखा, उसने जिस हाल में रखा मुझे अच्छा रखा। मैंने ही खुद को जहां में न कहीं का रखा, उसने जिस हाल में रखा मुझे अच्छा रखा, और मुद्दतें मेरी खामोशी में गुजर जाती थीं, मुद्दतें मेरी खामोशी में गुजर जाती थीं, मुद्दतों उसने भी चुप शाह का रोजा रखा। मुद्दतें मेरी खामोशी में गुजर जाती थीं, मुद्दतों उसने भी चुप शाह का रोजा रखा, और के भाग लिखे नस्ख में तालीक में भी, और के भाग लिखे नस्ख में तालीक में भी, मेरी किस्मत के लिए खत्ते शिकस्ता रखा। और के भाग लिखे नस्ख में तालीक में भी, मेरी किस्मत के लिए खत्ते शिकस्ता रखा, वरना अहबाब मेरे मुझसे जुदा हो जाते, वरना अहबाब मेरे मुझसे जुदा हो जाते, इसलिए खुद से बहुत दूर का रिश्ता रखा। वरना अहबाब मेरे मुझसे जुदा हो जाते, इसलिए खुद से बहुत दूर का रिश्ता रखा, और फायदे मैंने ही गिनवाए थे दूरी के उसे, फायदे मैंने ही गिनवाए थे।

दूरी के उसे, वरना कब उसने बिछड़ने का इरादा रखा। फायदे मैंने ही गिनवाए थे दूरी के उसे, वरना कब उसने बिछड़ने का इरादा रखा। और मेरे चेहरे पे रखे उसने बुजुर्गी के नकूश, मेरे चेहरे पे रखे उसने बुजुर्गी के नकूश, और सीने में हुमकता हुआ बच्चा रखा। मेरे चेहरे पे रखे उसने बुजुर्गी के नकूश, और सीने में उमकता हुआ बच्चा रखा। मौत का काम था करना ही मेरा काम तमाम, मौत का काम था करना ही मेरा काम तमाम, जिंदगी ने भी कुछ ऐसा ही रवैया रखा। मौत का काम था करना ही मेरा काम तमाम, जिंदगी ने भी कुछ ऐसा ही रवैया रखा। और मुद्दतें बीत गईं इनको सुनाते आजर, मुद्दतें बीत गईं इनको सुनाते आजर, आज तक हमने हर एक शेर को ताजा रखा। मुद्दतें बीत गईं इनको सुनाते आजर, आज तक हमने हर एक शेर को ताजा रखा। और एक और गजल के चंद्रशार में आपके खिदमत में पेश कर रहा हूं, मतला अर्ज है कि इससे पहले कि गमे इश्क मवाली हो जाए, इससे पहले कि गमे इश्क मवाली हो जाए, जहन पर दिल की हुकूमत की बहाली हो जाए। इससे पहले कि गमे इश्क मवाली हो जाए, जहन पर दिल की हुकूमत की बहाली हो जाए। और यूं भी फुर्सत किसे तहरीर तेरी पढ़ने की, यूं भी फुर्सत किसे तहरीर तेरी पढ़ने की, लिखने इतना कि ये दीवार भी काली हो जाए। यूं भी फुर्सत किसे तहरीर तेरी पढ़ने की, लिखने इतना कि ये दीवार भी काली हो जाए। और जो दुआ दिल से निकलती है, अब अपने हक में इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा, जो दुआ दिल से निकलती है अब अपने हक में, आते आते न लबों तक मेरे गाली हो जाए। जो दुआ दिल से निकलती है अब अपने हक में, आते आते न लबों तक मेरे गाली हो जाए। कोई दरिया नहीं जब इसमें उतरने वाला, कोई दरिया नहीं जब इसमें उतरने वाला, कतरा कतरा ये समुंदर भी न खाली हो जाए। और इससे पहले कि लगे कुफ्र का फतवा मुझ पर, इससे पहले कि लगे कुफ्र का फतवा मुझ पर, मेरी देरीना उम्मीदों की बहाली हो जाए। इससे पहले कि लगे कुफ्र का फतवा मुझ पर, मेरी देरीना उम्मीदों की बहाली हो जाए। और फिर मेरे मुल्क का सर फख्र से हो जाए बुलंद, फिर मेरे मुल्क का सर फख्र से हो जाए बुलंद, काश मुझसे भी कोई काम मिसाली हो जाए। फिर मेरे मुल्क का सर फख्र से हो जाए बुलंद, काश मुझसे भी कोई काम मिसाली हो जाए। और वरना छिन जाएगा ये ताज भी सुल्तानी का, वरना छिन जाएगा ये ताज भी सुल्तानी का, देखना कासे जमहूर ने खाली हो जाए। वरना छिन जाएगा ये ताज भी सुल्तानी का, देखना कासे जमहूर न खाली हो जाए। और सोच ले, मक्ते का शेर है कि सोच ले पहले ही आजर कोई अच्छा सा जवाब, सोच ले पहले ही आजर कोई अच्छा सा जवाब, इससे पहले कि हर एक जख्म सवाली हो जाए। सोच ले पहले ही आजर कोई अच्छा सा जवाब, इससे पहले कि हर एक जख्म सवाली हो जाए। और चंद मुख्तलिफ गजलों से कुछ अशार के, उस कबीले के लहू में जायका इतना लगा, उस कबीले के लहू में जायका इतना लगा, जिसको भी देखा उसी के खून का प्यासा लगा। उस कबीले के लहू में जायका इतना लगा, जिसको भी देखा उसी के खून का प्यासा लगा। और अपने गम से भी उसे इतनी परेशानी न थी, अपने गम से भी उसे इतनी परेशानी न थी, मेरी खुशियां देखकर जितना उसे सदमा लगा। अपने गम से भी उसे इतनी परेशानी न थी, मेरी खुशियां देखकर जितना उसे सदमा लगा। और सुबह होती है तो दफ्तर में बदल जाता है, सुबह होती है तो दफ्तर में बदल जाता है।

0: ये मकान रात को फिर घर में बदल जाता है, सुबह होती है तो दफ्तर में बदल जाता है। ये मकान रात को फिर घर में बदल जाता है, अब तो हर शहर है एक शहरे तिलिस्मी के जहां, जो भी जाता है वो पत्थर में बदल जाता है। अब तो हर शहर है एक शहरे तिलिस्मी के जहां, जो भी जाता है वो पत्थर में बदल जाता है। और खूबसूरत सा भरम तोड़ गया था कोई, खूबसूरत सा भरम तोड़ गया था कोई, दूर रहती थी कहीं चांद पे बुढ़िया कोई। खूबसूरत सा भरम तोड़ गया था कोई, दूर रहती थी कहीं चांद पे बुढ़िया कोई। और लोग दो गज के मकानों में भी रहते हैं जहां, लोग दो गज के मकानों में भी रहते हैं जहां, कोई दरवाजा न आंगन न दरीचा कोई। लोग दो गज के मकानों में भी रहते हैं जहां, कोई दरवाजा न आंगन न दरीचा कोई। और लोग यूं ही नहीं बदनाम समझ बैठे हैं।
1: अभी आप महसूस हो रहे थे फरियाद आज़र के कलाम से, और उम्मीद यही है कि ये कलाम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। और अब बारी है दोस्तों अफसाने की, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर शमा अफरोज जैदी का तहरीर करदा अफसाना पारस। तो आइए सुनते हैं अफसाना पारस।
2: घंटी बजते ही प्रोफेसर शाहान फारूकी क्लास में दाखिल हुए। तमाम तलबा और तालबात ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, फिर उनका इशारा पाते ही अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। उन्होंने सरसरी से नजर क्लास पर डालने के बाद अपने लेक्चर का आगाज किया। मौजू था फिक्र इकबाल में अमन आलम का तसव्वुर। तमाम तलबा और तालबात नहायत तवज्जो से उनका लेक्चर सुन रहे थे और जल्दी जल्दी नोट्स लेने में मसरूफ थे। लेकिन गजाला का ध्यान लेक्चर की जानिब नहीं था, वो बार बार पहलू बदल रही थी। एक कब क्लास खत्म हो, खुदा खुदा करके क्लास खत्म हुई तो उसकी जान में जान आई। प्रोफेसर साहब भी तलबा पर अलविदाई नजर डालते हुए बाहर चले गए। उनके निकलते ही तमाम स्टूडेंट्स की बेहंगम आवाजें गूंजने लगी। लेकिन अशर सबसे बेनियाज आज के लेक्चर पर गौर कर रहा था। उसके जहन में कितने ही सवाल उभर रहे थे और वो जल्दी जल्दी अहम नकात अपनी कापी पर नोट कर रहा था। महवियत में उसे यह भी मालूम न हो सका कि कब गजाला उसके नजदीक आकर खड़ी हो गई। उसके खकारने पर अशर ने निगाह उठाकर देखा तो गजाला ने किताबें उसके सामने पटक दी। गजाला को यूं गुस्से में देखकर अशर मुस्कुराने लगा और बोला, क्यों, क्या हो गया है, तुम्हें क्या किसी से लड़कर आ रही हो? गजाला बिल्कुल खामोश थी। उसकी झील जैसी आंखों में आंसू भरे हुए थे। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो अशर घबरा सा गया और प्यार से उसके माथे की लट हटाते हुए बोला, गजाला जान कुछ तो बोलो, क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? उसने एकदम ही कई सवाल कर डाले। गजाला आंसुओं को पीने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, तुम्हें इससे क्या, कोई मरे या जिए, किताबों से फुर्सत मिले तब ना। अच्छा चलो, चलकर लान में बैठते हैं। दोनों आहिस्ता खामी से लान की जानिब कदम बढ़ाने लगे। फिर घास पर बैठते हुए अशर आहिस्तगी से बोला, अब बताओ क्या बात हो गई, क्यों इतनी उदास हो? गजाला का मूड अब कुछ बेहतर हो चुका था। वो झुकी झुकी नजरों से बोली, आपको मालूम है कल मैं कॉलेज क्यों नहीं आई थी? हाँ मालूम है। अशर की रगे जराफत फरक उठी, तो बताइए। बता दूं सच सच? हाँ हाँ, कह भी चुकी है, तुम्हारे सर पर सींग निकल आए थे। गजाला एकदम गुस्से में उठ खड़ी हुई और जाने के लिए मुड़ी, तभी अशर ने उसका हाथ थाम लिया। गजाला क्या हो गया है तुम्हें, मजाक कर रहा हूँ? अच्छा अब बताओ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, तुम्हारी बातें सुनूंगा। अशर वाकई गर्दन झुकाकर बैठ गया। गजाला का गुस्सा काफूर हो गया। वो बोली, अशर आज मैं एक अहम फैसला करने आई हूँ। कह भी चुकी है, अशर उसकी नकल उतारते हुए बोला। बस बस मजाक नहीं। गजाला का मुंह शगुफ्ता हो चुका था। उसने कहना शुरू किया, कल कुछ लोग मेरा रिश्ता लेकर आए थे और पापा मम्मी को। अशर गजाला की बात दरमियान में काट कर बोला, कौन लोग आए थे, क्यों आए थे, कहां से आए थे? उसने एकदम ही कई सवालात कर दिए। सच बताओ गजाला, फिर तुमने क्या कहा? कहती क्या, मुझे कहने का मौका ही कब मिला? गजाला उसकी कैफियत से लुत्फ अंदोज होते हुए बोली, फिर भी कुछ तो कहा ही होगा गजाला, अगर तुम लोगों ने कोई फैसला कर लिया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। गजाला अपनी धुन में सुनाती रही, लड़के वालों ने देखते ही मुझे पसंद कर लिया, लड़का शहर में बहुत बड़ा बिजनेस करता है, ऊंचा खानदान है, करोड़पति लोग हैं, ये तमाम बातें मुझे बड़ी बाजी ने बताई थी जब वो मेरे पास मेरी राय मालूम करने के लिए आई थी। फिर तुमने क्या कहा? अशर की घबराहट हद से सिवा थी। मैंने बाजी से साफ कह दिया। इतना कहकर गजाला ने शर्म से गर्दन झुका ली। क्या कहा, जल्दी बोलो, क्यों मेरी जान लेने पर तुली हुई हो? मैंने कह दिया, अभी मैं पढ़ रही हूँ, तालीम मुकम्मल करने के बाद ही इस मसले पर सोचूंगी। लेकिन अक्सर तुम खुद ही सोचो, मेरे बहाने कब तक चलेंगे? इस बार सब मुझसे बहुत नाराज हैं। बड़ी बाजी कह रही थी गजाला इतना अच्छा हसीन

स्मार्ट और शरीफ लड़का चार लेकर भी ढूंढो तो नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने बाजी से कह दिया। गदाला ने जुमला अधूरा छोड़ दिया और गर्दन झुका ली। हशर को हमेशा से अच्छी लगने वाले गदाला पर गुस्सा आ गया। बुरा मानते हुए बोला, कुछ तो बोलो, तुमने क्या कहा, कुछ तो कहा होगा, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो। वो जल्द से जल्द गदाला के मुंह से फैसला सुनना चाहता था। मैंने उनसे कह दिया, आपी, मेरे पास तो खुद एक चांद है जो आसमान पर नहीं जमीन पर चमकता है। कहकर गदाला ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिए। अशर मौत और हयात के कश्मकश से निकल चुका था, फिर उसके ऊपर संजीदगी तारी हो गई। वो गहरी सोच में डूबते हुए बोला, हाँ गदाला मेरी जान, तुम करोड़पति बाप की बेटी हो, तुम्हारे पापा मुझ जैसे कमाया इंसान से अपने नादों से पली बेटी का ब्याह क्यों करने लगे, और मैं तुम्हें दे भी क्या सकता हूँ, गरीबी, भूख और आंसुओं के सिवा। गदाला ने तड़प कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा ना कहो अशर, हौसले से काम लो, तुमसे बिछड़कर तो मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अशर उसे संजीदगी से समझाता रहा और ये कहकर उठ खड़ा हुआ, चलो अब घर चलते हैं, तुम्हें भी देर हो रही है। खिलाफ मामूल अशर बहुत ही खामोशी से घर में दाखिल हुआ और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसके जहन में गदाला से हुई बातें गर्दिश कर रही थी। वो गदाला से जुदाई के तस्वूर से ही कांप उठा था। बार बार उसे एक ही ख्याल परेशान कर रहा था, क्या गदाला किसी और की हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गदाला मेरी है, सिर्फ मेरी। वो शिद्दत जज्बात में चीख उठा। उसकी चीख सुनकर उसकी छोटी बहन दौड़ती हुई आई और बोली, भाई जान तबीयत तो अच्छी है, आप बहुत जोर से चिल्लाए थे। अशर शर्मिंदा था होकर बोला, नहीं बहन कोई बात नहीं, तुझे गलतफहमी हुई होगी, चल जल्दी भाग यहाँ से, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना लेकर आ। रिफत अपनी जगह से टस से मस न हुई और बोली, नहीं भाई जान, मैं खाना लेने नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि आज आप इतने खामोश क्यों हैं। जरूर कोई बात है, बताएं, वरना वरना क्या। अशर उसे मारने के लिए उठा और रिफत खाना लेने दौड़ गई। खाना ट्रे में सजाकर अशर के पास लाई। अशर खाने पर यूं टूट पड़ा जैसे सचमुच ही उसे जोरों की भूख लगी हो। वो महज दिखावे के लिए खा रहा था, उसकी उदासी कहीं उसकी उदासी रफत भांप न ले, लेकिन उदासी भी कहीं छुपी रह सकती है भला। रिफत फिर बदित हुई, भाईजान प्लीज बताइए ना, आप खामोश क्यों हैं। जरूर कोई बात है, वरना आपके आते ही घर में गोया दलदला सा आ जाता है, और आज तो आपने मेरे धब भी नहीं लगाई। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा रिफत की बच्ची, अभी ठीक करता हूँ तुझे। कहकर अशर उसे मारने के लिए उठा ही था कि इतने में अम्मी आ गई और भाई बहन की प्यार भरी नोक झोंक देखकर मुस्कुराती हुई चली गई। उनके जाते ही रफत कुछ याद करते हुए बोली, भाईजान जानते हैं आज गदाला बाजी के घर बहुत से लोग आए थे गाड़ी में बैठकर, गाड़ी भी बहुत लंबी थी और उसमें से बेहद शानदार स्मार्ट लड़का भी उतरा था। सुना है गदाला बाजी का रिश्ता मांगने आए थे, बहुत जल्दी मंगनी होने वाली है। बज़ाहिर बेदिली लेकिन ज़हनी तौर पर तवज्जो से अशर रफत की बातें सुन रहा था। फिर खुद को संभालते हुए बोला, अच्छा रफत अब अपना लेक्चर बंद कर, बहुत हो गया, चल भाग यहाँ से, मुझे अपने जरूरी नोट्स तैयार करने हैं। रिफत हंसती हुई कमरे से चली गई। उसे इत्मीनान हो गया था कि उसके भाईजान को कुछ नहीं हुआ, लेकिन रिफत के जाने के बाद अशर ने कमरा बंद कर लिया और बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। रिफत की बातों से वो मजीद परेशान हो उठा था। सारी रात जागता रहा, कभी बैठ जाता, कभी लेट जाता, कभी कमरे में टहलने लगता। यूं आंखों ही आंखों में उसने रात गुजार दी और उसे उसका कोई हल न मिल सका। इस परेशानी में कई रोज गुजर गए, अब वो खामोश रहने लगा था। उसकी खामोशी को अम्मी ने भी महसूस कर लिया। अशर हत्तुल इम्कान खुद को खुश रखने की कोशिश करता। जब वो घर देर से आने लगा था, एक दिन मामूल के मुताबिक वो देर से घर लौटा तो रफत ने उसे एक लिफाफा दिया और बोली, गदाला बाजी ने भेजा है। उसने बेताबी से लिफाफा खोलकर पढ़ा। पढ़ते ही उसकी मुट्ठियां गुस्से के मारे भीचने लगी। उसकी नजरें गदाला की तहरीर पर फिसलने लगी। गदाला ने लिखा था, अच्छे अशर, तुमसे मिलने के सारे रास्ते मजदूर हो चुके हैं, बहुत मुश्किल से तुम तक ये पैगाम पहुंचा रही हूँ कि अब्बू ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा रिश्ता वहीं तय कर दिया है जहाँ वो चाहते थे। जल्द ही मेरी शादी भी हो जाएगी, मुझे बचा लो प्लीज, यहाँ से कहीं दूर ले चलो, ऐसी जगह जहाँ दो प्यार भरे दिलों को मिलने से कोई न रोक सके। अब्बू की सेफ की चाबी मेरे पास रहती है, जेवरात और रुपया लेकर आ रही हूँ, जिस दिन भी तुम कहोगे मैं आ जाऊंगी, सिर्फ तुम्हारे गदाला। अशर का कलम बहुत तेजी से कागज पर तैरने लगा और ये हरूफ उभरने लगे, गदाला हमेशा खुश रहो, तुम्हारा खत पढ़कर खुशी के बजाय रंज हुआ, मुझे तुमसे हरगिज ऐसी उम्मीद न थी, तुम आला खानदान की चश्मे चराग हो, जज्बात से हरगिज काम न लो, जब लोगों को मालूम होगा कि शेख शहाबुद्दीन की बेटी भाग गई है तो अब्बू का क्या हाल होगा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अब्बू जीते जी जिंदा दरगोर हो जाएंगे, और ऐसे में तुम भी सुख से न जी सकोगी। मेरा मशवरा है, जहाँ तुम्हारे अब्बू तुम्हारा रिश्ता तय कर रहे हैं उसे ही बखुशी मंजूर कर लो, इसी में तुम्हारी बेहतरी है, वरना मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगा, आज से हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं, कभी का तुम्हारा अशर। खत लिखने के बाद अशर को यह गौना खुशी का एहसास हुआ कि उसने अपना फर्ज निभा दिया था। वो अपने जहन से गदाला की यादें खोज देना चाहता था, उसे भुलाना आसान न था, लेकिन उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि वक्त हर जख्म का मरहम और हर अमर का दावा होता है, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। तीन दिन बाद जब रिफत ने उसे एक और लिफाफा दिया तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। गदाला के अब्बू ने उसे मिलने के लिए बुलाया।

0: वो जल्दी से तैयार होकर गदाला के घर पहुंचा और काल बेल पर उंगली रख दी। जवाब में मुलाजमा ने दरवाजा खोला और उसे ड्राइंग रूम में बिठाकर खुद कॉरिडोर में गायब हो गई। एक एक पल जैसे जैसे एक सदी बनने लगा कि इसी दरमियान में गदाला के अब्बू ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। वह एहतरामन खड़ा हो गया। उन्होंने आहिस्तगी से उसका हाथ पकड़कर बराबर वाले सोफे पर बिठा लिया और बोले, बेटा अशर, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि आज हम अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं। ये कहकर उन्होंने जरा सा दम लिया। अशर के दिल पर तीर सा चल गया, लेकिन खुद को काबू में रखे रहा। उन्हें हल्का सा भी एहसास न होने दिया। वो फिर बोले, और सुनो, मैं गदाला के इंतखाब पर इंतहाई खुश हूँ और जल्द ही उसकी शादी भी कर देना चाहता हूँ। अशर की उलझन बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो चुपचाप दम साधे गदाला के अब्बू की बात सुन रहा था। सुनो अशर, इसीलिए मैंने वो ड्रामा खेला और गदाला के हाथों खत लिखवा कर तुम्हारे पास भेजा, ताकि तुम्हें परख सकूं कि तुम वाकई गदाला को पसंद करते हो या उसकी दौलत से प्यार करते हो। मुझे खुशी है कि तुम कसौटी पर खरे उतरे हो। सुनते ही अशर को यूं लगा जैसे किसी ने उसके कानों में रस घोल दिया हो। वो बेहोश होते होते बचा, फिर आइंदा आने वाली शहनाइयों की मधुर गूंज में खो गया।
1: बहुत ही खूबसूरत अफसाना था पारस, डॉक्टर शमा अफरोज जैदी का तहरीर करदा। वाकई क्या जज्बात थे इस अफसाने में, बहुत ही उम्दा अफसाना था। अब जाने का वक्त आ गया, लेकिन ऐसे थोड़ी जाएंगे जनाब। एक गजल आपकी नजर करते हैं, उसके बाद आपसे लेंगे इजाजत। तो आइए चंदनदास की गाई हुई ये गजल सुन लेते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज में ये थी इस प्रोग्राम की पहली पेशकश फिल्म लैला मजनू से। नगमा निगार थे साहिर लुधियानवी, मौसीकी मदन मोहन की थी। और लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में इस प्रोग्राम का अगला नगमा। फिल्म है इनकार, मौसीकी राजेश रोशन की।

0: मर्रा गाती जिंदगी नुकसान हुई दोन का मैं एनर्जी इंजॉय तंग आते गो करी कहते एनर्जी से बचा एरिज मोज देती का कि गाता अच्छा सना गेरी कमरे अनु यारी बिजली और ऑफ असे चाचा यारा जरूरत में से एरिज यारी गा एनर्जी ची शीन पंखे की दो बन बसे चाचा हीटर छीन का तो यारा दी जरूरत का तो मैं दो आम बन बसे चाचा दो ने हम वो गाता कुछ रिवेनेबल एनर्जीज बत जो दो गाता डुलन रुकता और जैसे कि आते सोलर एनर्जी दो आते इस्तेमाल बनाएंगे फिर भी हम खुआ रिलीजियसली यूज बचा गचुक चुपाना का तो जितना हमें जरूरत है उतना हम यूज करें बाकी जो है हम सेव रखें जिससे हम सस्टेनेबल वही कहते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमी ब्याज चलो यार छू ना कहो गार यारे छू ना कहो यार जरूरत यारे छू इस्तेमाल बचा बाकी यारे छू मामो फॉर्म ही पहुंचा दिया ना सिर्फ दिया सकता आता महदूद मिलू छा ये ट्रांसपोर्टेशन एंड सॉन्सिक एनर्जी वेस्ट जैसे कि अतंग मिंदा चिच्ची की कम से कम 5 किलोमीटर खुरान सा डुलें दो हालांकि खुए गाड़ी जगह नो मिंदा 5 नफर को सीटी का पूरी छाया छा ना कहते एनर्जी चाहे पेट्रोल इन चाहे डीजल इन जो भी होगा कंजम्पशन पर ज्यादा बेनियत देखिए कार पुलिंग जरबान साइकिल जरबान हर चीज आना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दो दो चीज उन इस्तेमाल बचा जिससे हो सके की एनवायरमेंट बचे छे गति रिसोर्स बचे छे जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमारे साथ तरक्की होगा तो हम आने वाले फ्यूचर के लिए भी कुछ सोच नजर भी कोशिश
1: दूजिया सर दादी नो यहाँ की मिशन लाइफ हम COP26 2021 से नो द आइडिया प्रेजेंट बस प्रिंसेस छा इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन कंजर्वेशन दूस गचु असर रिता जो ये दी इम्पैक्ट पोचांग इंटरनेशनली
0: बिल्कुल जो दियो गता COP26 ही दिन ध्यान गता यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज के हिसाब का खोज एक्चुअल 2021 एनालिस छह हजार मैंने चीज जरना का तो गता गार इन का तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मन ज्यादा चुया इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन गति चम से गति छीटे जितने भी हम प्रोडक्ट यूज कर रहा है बेशक अल्टीमेटली वो सब एक गति इंडस्ट्री से आना चीज इंडस्ट्री से अनु धन जाना चम से गता कार्बन प्रोड्यूस और तेफिया गता हर चीज लगाते मद्देनजर रखते हुए कौन जिसकी डिकार्बनाइजेशन जरे कार्बन पर थोड़ा सा कम बचा अधे जती चीज को एक खुरियाना स्टार्ट बोझ जरूर जुआ देखना कौन दिया खुरियान मेन जिसकी पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है छोटा छोटा मी सगई हिस्सा गाते आंदियां छुपो गति इन्वायरमेंट लगाते लज बचे जरे जैसे कि गता गति लद्दाख है गता दरे यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन की गाँव साफ चर्चा या गति गाँव है चाहे इंडस्ट्रीज योजना का तो दे इंडस्ट्रीज लेवल पोखरिया क्लीन एनर्जी इस्तेमाल बचा या दो यारी रिसोर्स पोतना का तो गचुक चुपा से लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल बचा कंजम्पशन पो गता गति हिसाब ची कलें चाहे एक्स्ट्रा लेन मिलें चाहे देफ या गति दरे यूटी लद्दाख है गता दिचिक 2026 जैसे कि गति यूल लजरना का तो स्वच्छ गाँव सुरक्षित हवा और पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक स्वच्छ गांव का होना बहुत जरूरी है जरे दियुंगाती दरे लदा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना डुल जुआ दो मेन मांगाती हर चीज जो है गति COP26 यानी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज 2021 को पूरा अच्छी तरह से गति दरे लदा है इम्प्लीमेंट चेंज चेजर में प्लांटेशन ज्यादा बढ़ रहा है क्लीनेस ड्राइव ज्यादा चल रहा है दिया इनको लेके लास्ट ईयर 2025 जमीयत उलमा इसना शेरे सदर जनाब शेख नजरुल महती ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव उठाया जो है क्योंकि मैं उस बहसियत रिप्रेजेंटेटिव अलहिमालया ग्रीन मिशन और रिसर्च सेंटर क्योंकि हम भी उस कॉप जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था उसको लेके हमारे नती यूटी लेवल का चाहे एलजी बोला शेख साहब सब उन लोगों को इसको एंडोर्स करके आगे ले गया ताकि नती लेवल पे लोग हमने 1.27 लाख प्लांटेशन लगाया उनमें से करगिल पगामस पूरा गंगमस ताकि उसका सक्सेस रेट भी इतना क्योंकि लद्दाख लेवल पे 50% सक्सेस रेट होना भी बहुत चैलेंजिंग है मगर अल्लाह की फजल व करम से हमें उनमें अच्छा सक्सेस रेट मिला और सबसे पहले इस बात को नजर रखते हुए क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी मोबिलाइज होना इंडिविजुअल मोबिलाइजेशन जरचाओ दो निमान सख्त जरूरत होती और उस वक्त 2025 से जब से हमने ये प्लांटेशन ड्राइव किया उसके बाद जो है अभी गति रानो इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन गता स्टार्ट सों कम्युनिटी गता मोबिलाइज सों हर जगह पे उसी टाइम जिस टाइम

0: हमारे पास एक सीजन होता है प्लांटेशन का, उस वक्त लोगों का डिमांड होता है कि हमें अलग अलग पौधे चाहिए, हमें सैपलिंग्स चाहिए, इस तरह की डिमांड जो है वो आना शुरू हो गया सर यहाँ।
1: अवलान साहब छाने जिन थी इनिशिएटिव बारे में हो जो G20 तभी से रिलेस हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ही इंडिविजुअल इनिशिएटिव की में इंडिविजुअल बिहेवियर चेंज में स्वच्छ भारत अभियान जैसे खुले यूरित ना से खुले सफाई बा दी सिस्टम पो खोए शुरू बास छाने यहाँ गजुस सर जो इंडिविजुअल लेवल के निखेर इंटरनेशनल लेवल का लेप चूस चल ची इम्पैक्ट चीज हो दी
0: जबरदस्त जुदा रे एक नाता दरे यारे हम पहले कब उसकी सिवा संकल्प अभियान जो है नती 17 सितंबर ऑनवर्ड्स डूल इन जू 17 अक्टूबर सप्ताह तो इसमें दिया मकसद प्रोग्राम अपन की मोदी जी का जो एक 25 ईयर्स अब जो सर्विस रहा है एज ए चीफ मिनिस्टर हो या एज ए अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हो देखिए आप उसने वही बोला कि जितना भी हमने सेवा किया है तो उस सेवा में सिर्फ यहाँ तक नहीं उसमें आपने उसने क्लीनेस्ट ड्राइव यानी स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर जो है 2014 से ही उसने स्टार्ट किया। हाँ उस मिशन से अभी स्वच्छ भारत का हर जगह पे जैसे कि ओपन डिफिकेशन जरेगा तिर जैसे ना मी गंगमा बाहर इंडिया गोवा छाना का तो बाहर अच्छा अभी ओपन डिफिकेशन जो है वो हमारे पास जीरो पे पहुंच गया जीरो पे 6,000 बने क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ क्लीनेस तक जाडू तक महदूद नहीं था उसमें हर जगह पे जहां जहां पे पब्लिक आना जाना होता है वहां पे पब्लिक टॉयलेट बनाना होता है और आप हर जगह देख सकते हैं वो हमारे चाहे आरडी डिपार्टमेंट हो या बाकी सारे सपोर्टिंग बाय डिफरेंट एनजीओज जो है हर किसी ने सपोर्ट करके उसको इतना आगे तक ले गया। अभी जो है इंडिया जो है ओपन डिफिकेशन जो है वो जीरो पे पहुंचा है ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद आपने बताया कि G20 जो है हमारे 2023 में यहाँ पे इंडिया में ही होस्ट हुआ न्यू दिल्ली में जिसमें हमारे बहुत सारे लीडर्स आए G20+1 भी आ गया तो उन्होंने एक सब कहा था कि हमें जितनी तरह से अपने इन्वायरमेंट को बचाना है सेम जो अभी हमने रिपीट किया जो COP26 वाला जो मिशन लाइफ वाला उसको हमने आगे कैसे एंडोर्स करना है उसको एंडोर्स करने के लिए सबसे पहले पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या हाई लेवल पे हो और उसके बाद जो है उसको फाइनेंशियल सपोर्टिंग की भी जरूरत है इंटरनेशनल कोलेबरेशन की जरूरत है जैसे कि बैन अवी तरह का सगल लखतुत्तों से गजुक बसीदियों के नखर चीन जरे इनमें बहुत अच्छा काम ले गया तो उसमें एक वोट्स आया था सर ट्रेवल फॉर लाइफ जरे ट्रेवल फॉर लाइफ जो है ये मोदी साहब ने भी वहां पे उसका एक विजन था कि हमें जहां जहां पे हमारा टूरिज्म जाएगा उस टूरिज्म में जो एक इंडिविजुअल टूरिस्ट का जो आपने बोला लाइफ बिहेवियर कैसा होना चाहिए उस डेस्टिनेशन को लेके तो उन्होंने बोला कि ट्रेवल फॉर लाइफ वाला एक मिशन हम स्टार्ट करते हैं तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने भी रखा जिसमें जहां पे भी हो जिस डेस्टिनेशन पे भी हो जाए वहां पे उनकी क्लीननेस का ख्याल रखना है वहां पे जो उनकी वाटर हुए जो चीजें जो है किस तरह से उसकी वाटर बॉडीज को हमने इस्तेमाल करना है बहुत सारे एक सस्टेनेबल टूरिज्म जो भी इवन की टूरिस्ट गाइड होगा वो उनको अवेयर करेगा उस एनवायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए वो जो है टूरिस्ट वहां पे जाएगा जिस जिस टूरिज्म को वो हमारे लद्दाख और करगिल के लिए रिलेवेंट है सर वो वहां पे उस टाइप जो हमारे जो 20+1 पे हुआ था हमारे न्यू दिल्ली में उसी वक्त उसको भी हमने अडॉप्ट किया था
1: तो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचा है
0: हाँ नेशनल पहुंचा
1: है जो मिशन लाइफ मतलब मैं एक धरे दिन ही सोच रही थी था इंटरनेशनल एक लेवल एक कैंपेन चल रहा है ना जिस यहाँ गत्सु का मदद देने जो दी कैंपेन पोस्ट मतलब प्राइम मिनिस्टर इनिशिएटिव में ना गांधी गवर्नमेंट ने संदेश दिया बच्चे जो छाना गत्सु मदद से लेवल जो कि छू गए वाटर कंजर्वेशन इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट मोबिलिटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सब दूनी का गतु का इम्पैक्ट है जो दी मिशन लाइफ ये सोलो कर पर
0: बिल्कुल जो दरे दी हिसाब पे का दरे ना दियारे मोस्ट की सिर्फ कंपेन या अवेयरनेस पाता मेहदू ची डिस्पेंडू या सिर्फ दे का गाता जर्चिन अदवा अवेयरनेस प्लस एक्शन प्लस मेजरमेंट प्लस फीडबैक ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है एनवायरमेंट मैंने सिर्फ अवेयरनेस जो है लोगों को अवेयर कर देता है बाकी अवेयर हर किसी को हो जाता है एकदम नॉलेज मिल जाता है हाँ जी क्या न्यूज पे आ गया रेडियो पे बट अल्टीमेटली वो चीज ग्राउंड पे देखना चाहिए जैसे कि हमने आपको बताया कि उसमें एक मेजरमेंट यानी गचुक बसे ये सब कुछ करना चाहिए जैसे कि आपने बोला वाटर यूज वाटर को आपको कैसे पता चले कि यहाँ पे कितना वाटर यूज हो रहा है तो उसके लिए हमने एक रखा कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हर डेली कितने परसेंट कितना पानी यूज करता है, जैसे कि

0: उसका पीना होगा, उसका खाना, कपड़ा वपड़ा धोने, एक इंडिविजुअल पे,
1: इवन गाड़ी
0: वो
1: धोने तक।
0: गाड़ी गाड़ी धोने तक, ये एक पूरा डाटा आ जाता है जो है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आता है, तो सेम टूरिस्ट वाला का भी कितना हमारे पास गजुओं के इस्तेमाल से इम्पैक्ट पड़ता है। सेम थिंग आपका वाटर के बाद एनर्जी पे आता है कि एक इंडिविजुअल कितना एनर्जी कंजम कर रहा है। तो एक इस तरह की एक डाटा जो है हमारे पास होना चाहिए, जैसे कि एक इंडिविजुअल के बाद एक हाउस होल्ड कितना एनर्जी कंजम करता है, उनमें से वेस्ट कितना होता है। सेम इसी तरह वेस्ट मैनेजमेंट का भी, एक इंडिविजुअल कितना कचरा जो है वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसी तरह द्यून गंगमा अधिस जति का नतीस ठीक ठाक तरीके का नतीस मैनेज बसे दो नतीस गेंदा जैसे कि कस बिल्कुल एक डैशबोर्ड चेंज हुआ चाहे कि वो एक आपके इंस्टीट्यूशनल वे से एक स्कूल में एक डैशबोर्ड होना चाहिए। डैशबोर्ड पे आपको पता चलेगा कि आज जो है कितने परसेंट आपका बिजली यूज हुआ है, पानी हुआ था। वो एक स्कूल में भी आप बोल सकते कि मेरे स्कूल में आज इतने लीटर हमने पानी जो है वो टंकी में डाला था, मेरे स्कूल में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से मेरे यहाँ पे इतने पानी आ गया, तो वो आप कर सकते कि इंडिविजुअल पे डिवाइड कर सकता है। तो इसी तरह से आपका वेस्ट आपके पास इतना आ रहा है, तो 100 बच्चे पे डिवाइड करो तो एक गचुगा भी गुजरे। ऐसा डोज में सिर्फ आपकी स्कूल्स में होना चाहिए, रेस्टोरेंट में होना चाहिए, आपकी होटल्स में होना चाहिए, जहां जहां आपका है। तो इसीलिए सर एक हमारे लद्दाख में मिशन चल रहा है सर, मिशल खुरयुक सर, वो हमारे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फंड ने किया है। तो उसकी अभी मेरे रिगजिन जी उससे भी बात हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी तक 300 स्कूल लद्दाख में एमओयू साइन किया हुआ है सर। जितने भी इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पे उन्होंने एमओयू साइन किया है, और मिशन खुरयुक नाम का वो काम भी चला रहा है, जिससे जितने भी होगा आपका वेस्ट मटेरियल हो ये सबों को सिग्रीगेट कैसे करना है, जैसे कि प्लास्टिक को अलग से, शीशे को अलग से, कपड़े को अलग से, तो इस तरह से जो है अभी हमारे यहाँ पे काम होना शुरू हो
1: गई। यहाँ चीज सोच लद्दाख ना घरगी लेन मद्देनजर खसूस इन्वायरमेंट पे यहाँ पता फ्रिजाई लेन हाँ छुई यहाँ ता माना रिसोर्स सुनते रहो एल्टीट्यूड पर माना छो हाँ हाई हो बिल्कुल गत्सु का दू चैलेंज इन जो माता मिशन लाइफ पो इम्प्लीमेंट बचाओ चैलेंज इन हमें या नती मद्देनजर गत्सु का दू फायदा माने जो और नती लोकल कम्युनिटीज ना विजिटर गत्सुदिया कंट्रीब्यूट बाइन चैन जो।
0: बेशक सर ये सबसे जरूरी, क्योंकि हिमालयन रीजन एक टाइम पे वाटर बॉडीज के लिए सबसे अच्छे माने जाते थे। मतलब चिया जरबाना गति फेची हमारे पास बहुत सारे ग्लेशियर्स थे, तो ग्लेशियर्स होने के साथ साथ वो ग्लेशियर जो है हर साल अच्छा खासा हमारा चार्ज भी होता था। मतलब कम से कम हमारे जो मता इतियोदियोतपुंगा हम बोलते थे 4 फुट 5 फुट वो आता था, वो हमारे लिए रिचार्ज होता था और ग्लोबल वार्मिंग का कोई असर हमारे पर नहीं पड़ा था। इवन कि क्लाइमेट चेंज बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग बोलता है, ग्लोबल वार्मिंग का अब असर पड़ गया सर। लद्दाख का अभी जितना भी आपने देख रहा है कि हमारे ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होना बहुत शुरू हो गया है, और मेल्ट होने के बाद जो है छुमिक जरे दे
1: बिल्कुल
0: छुमिक नदी हर जगह पे आता है, छुमिक बंद छुमिक बंद छे मल्ला पॉइंट के हर किसी के लिए कुआ एक सोर्स नड़गोज दे जो आता है जहां से हमारे उसके लिए पानी आए। तो हमारे लिए सबसे पहला लद्दाख जो है इस वक्त सबसे चैलेंजिंग फेज पे इन्वायरमेंट को लेके दे फिया एक फ्रजाइल इन्वायरमेंट है, हमारे पास हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, हमारा वाटर सिक्योरिटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, इसी की वजह से सिर्फ ये वाटर की ही वजह से हमारे एग्रीकल्चर पे असर पड़ रहा है, हमारी ग्रीनरी पे असर पड़ रहा है, हमारे प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है, हमारा लाइफस्टाइल हर चीज पे जो है हमारे लद्दाख का असर पड़ रहा है, वो सिर्फ छोटे से पानी की वजह से। उसका भी बहुत सारे असर देखने को मिल रहा है, इसलिए मिल रहा है कि हम जो है अभी सीधा जो एक लद्दाख जो एक ट्रांजिशन फेज पे आया है कि हम ज्यादातर कंस्ट्रक्शन पे फोकस कर रहा है, हमारा इकोनॉमी जो है वो सिर्फ सर्विस सेक्टर या हम मैन्युफैक्चर सेक्टर में बहुत जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में भी बहुत असर पड़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं सर, जो पुराना इरिगेशन कनाल्स है वो सब अब पूरा खत्म हो गया, जहां जहां पे इरिगेशन कनाल्स होते थे आज वहां पे रोड बन रहा है, पानी ही नहीं रोड बन रहा है। तो रोड बनने के बाद जो है हमारे पास जो है जहां जहां हमारे

0: कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा वाटर साइकिल में भी बहुत
1: असर
0: सारे असर पड़ता है।
1: पड़ता
0: अगर आप लोग, हम बोलते हैं ना साइंस और साइंटिफिक तरीके से, जहां से आपका ग्रीनरी ज्यादा होता है वहां पे आपका वाटर साइकिल भी अच्छा होता है
1: ज्यादा होता है।
0: और वहां पे प्रिसिपिटेशन भी अच्छा होता है। और आप हमारे एक आपका नहीं है तो एक लेमेन और आम आदमी गति युल्ल दुखन सा कोई
1: प्रॉब्लम है
0: प्रो दियो हागुन्यू कि नता लो फलान चीजों से छुका
1: सु
0: नहीं
1: कम
0: होता
1: सु
0: है। ओ
1: बिल्कुल
0: चीज अगर बना नता गति लेवल पे का वाटर साइकिल पॉन्ग कम सो ग्लोबल वार्मिंग पॉन्ग हर जाना का तो नता छी दिया सर पूछे नहीं जुया
1: मसी जो वन साहब सा नता स्पेरा मन मोमो सो जो ए मिशी बारे रे दमो से मोल जो खसपा बसे चाना आखरी के जो यार दिया मोल छ कि नती स्कूल्स जवान लोकल बॉडीज सुन हां नती इंस्टीट्यूशन सा जैसे ने अनु अलग अलग इंस्टीट्यूशन है जरा चाना कम्युनिटीज गंगवा लोग से गते जी मिशन लाइफ पे का गसो अंता कंट्रीब्यूट बाइन चेंज जो पहला दी जो चाना यंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज गस लाइक क्रिएट छचा इन जी मिशन लाइफ पर बस आयो
0: कसा बख्शी जो सबसे पहला यार जिस की नतांगा नती गचुक डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन सुत नती अदे इंस्टीट्यूशन और इन्वॉल्वमेंट नंग नता दे अनखोंगी लखतु जो मंगा ता मन जरूरी इन क्योंकि नता सबसे पहले ने इंस्टीट्यूशन नता जरूरी सुंदे जो सबसे पहला नता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन निकला नता शुरू बने का तो सबसे पहला नता स्कूल सुत स्कूल जो है ना नता घर चीज ही नगा तो सबसे बुनियाद पंगा ती स्कूल एंड
1: स्कूल
0: स्ट्रक्चर इन जो
1: बिल्कुल
0: दरे स्कूल सरानवा यारा पहला जैस की मिशन कुरियुल जरे कौन एमओयू साइन बस तो दिया चुक लांग अति दरे हर स्कूल यानो सबसे पहले फ्रूनला अवेयरनेस है जरूरी। दूसरा अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन कौन इस आधे चीज सुनला
1: प्रैक्टिकल बस
0: प्रैक्टिकल
1: नॉलेज
0: जिसे हम R3 भी कहते हैं। R3 मतलब वो रीयूज रिपेयर एंड रिसाइकल सेशन जो है अदोन लजर माना का तो गचुक बस को दोबारा इस्तेमाल बचिन गचुक बस दो चोचिन या दो ने अबो को यंग को ला से अनु गतस स्टेचिन जरे दे भी स्कूल अनु गता इको क्लब यंग मन जरूरी किचन गार्डन गति ऑलमोस्ट हर जगह खत्म
1: स्कूल
0: सो
1: इंट्रोड्यूस
0: दो दो गता स्कूल इंट्रोड्यूस चार को छदो जो किचन गार्डन छोटा सा एक तो फूनला प्लांट से बारे में नॉलेज आ छे। तीसरी बात जो है खुआ एक थोड़ा सा ग्रोथ हो तो दो इवन के रेस्टोरेंट होटल वाला जो है खुआ खुदी लेवल पे का कीचड़ गार्डन ची की उम्र हो दो ना सिग्रीगेट नती चाम से वेस्ट मटेरियल उड़ना का तो दोन मतलब अलग अलग से वो खामा ना सिग्रीगेट बचा होटल पर खुद दे सिग्रीगेट बचा दो ना हर चीज यानो। दूसरी बात नता ना दिया नो मिशन लाइफ यानो में चेंज होगा थी हद से ज्यादा हमारे खाना भी वेस्ट हो रहा है वो भी एक मिशन लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा है। जैसे कि हम 20 बंदे के लिए खाना बनाना है 20 बंदा कितना खाएगा उसकी जगह पे हमारा जो है कम से कम 50 बंदे का खाना हमारे से वेस्ट होता है क्योंकि अलग अलग
1: वैरायटी
0: बिल्कुल ये वाला भी एक बहुत बड़ा आता है। जब ये एक तरफ से फूड सिक्योरिटी का भी एक हिस्सा है वो अलग टॉपिक है मगर मिशन लाइफ का वो भी एक हिस्सा है जो वो स्कूल लेवल पे भी बच्चों को हर चीज होगा। प्लास्टिक जो है बच्चों को कम मिनिमल यूज करना है प्लास्टिक का क्योंकि बच्चे जो है कभी कभार प्लास्टिक का बोतल भी लेके आता है फेंक देता है हर जगह तो दून गांव में गतांगा स्कूल लेवल के इवन की यूथ भी गतांगा दिया लोग इन्वॉल्व शहर को शायद जो यूथ चेयर जर बना गति यूथ ला एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस ग्रीन एंटरप्रेन्योर सो एनवायरमेंट बराबर दो एग्रीकल्चर की तरफ से गतांगा दून चाचा। तीसरी बात हमारे बिजनेस लेवल पे रेस्टोरेंट हो होटल्स हो हर जगह को एनवायरमेंट दो। तीसरा हमारा लोकल पंचायत LHDC है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है खुआ मिशन लेफ्ट ने वो लखथुत्ता से गाता आगे हो चाहे सिर्फ मिशन लाइफ जो है वो इन्वायरमेंट तक महदूद नहीं रहेगा अपने गला बस से लाइवलीहुड का भी वो हिस्सा बन सकता है। जितना आप ग्रीनरी लगाएगा प्लांट ज्यादा आएगा तो उसका जो प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेटली किसी लाइवलीहुड का रॉ मटेरियल बनता है दिया खुरा था एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरफ गतम
1: मलाम साहब ता मना मता प्रोग्राम पे टाइम पर मम सोजो सेवा संकल्प अभियान है न्यूज मता नॉर्मल सर्विसेज कने बियॉन्ड ध्यान चिक दर मिशन लाइफ इनिशिएटिव पॉन द सोशल सर जो चले जिसके मतलब गामा लोग से इन्वायरमेंट स्ट्रोंग लोग बचाओ सहज सोशल लेवल का कंट्रीब्यूट बचाओ नाती प्राइम मिनिस्टर मिशन पॉन हाँ स्वच्छ भारत अभियान जरे दी मिशन लाइफ ए कड़ी चिचिक जर बंगियां दे आता कड़ी चिचिक है मैं ना दोनों यंबो यंबो रंग फिर बस बस लगाते हैं जिगरेट भागो शिक्षा
0: बहुत जरूरी
1: हाँ तब तो लगाते जिंदगी बचीन जरे
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सामने लगाते गेंद में सब पो वेस्टेज पर कम पिंचा गाची शिक्षा ना वेस्टेज
0: बिल्कुल
1: इवन जिंदगी नो टाइम पर वेस्टेज जो आते
0: हैं
1: ना दी

0: वेल ते दुए फ्रूसा सब जगह तेज टाइम वेस्ट बिल्कुल अता अमा गमा इन मोबाइल खोले ने दुगे प्राइम टाइम पे अनु गते मोबाइल लता से दुपना सब जगह ते टाइम वेस्ट छु बिल्कुल चाना दुन गमे ते नते लास बसे नते गेन मिस अप वेस्टेज पो कम बचो दे नते मिशन लाइफ
1: बिल्कुल
0: वी मकसद पो जो है जो
1: बेशक बेशक
0: ओलाम साहब यरा दे सिक्योर ते नची दी दी इंपोर्टेंट इनिशिएटिव का सेल्फ बसे नते मिमांग सुन ले
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: रिचिंग मौजूद इतर
1: है
0: और इसमें मनुष्यात मुताबिक 2026-2027 का हाल में जारी किया गया विभिन्न दस्तावेजों की रियासतों और टीम ने दिया गया हदफ पर तबादले हुए। इस मौका पर अमित शाह ने नई वेबसाइट को तिवतियों को और इन मनुष्यात मुताबिक इतारियां पैदा करने वास्ते चार टेलीविजन
1: कंपनी जूले
0: नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्ण ने पानी का मुनसिफाना इस्तेमाल और इसने बचाव वास्ते कई कदम उठाने पर जोर दिता है। आज नई दिल्ली में नोमा इंडियन इंटरनेशनल वाटर एक में जिस दौरान मुतलकीन पानी की बेहतर निजामत न जुड़िया चैलेंज हल करने को मौका मिला। उन्होंने क्योंकि सिर्फ एक अदारो एक सेक्टर या एक रियासत एक भी पानी के मुतलिक मसला पर काबू नहीं कर सकते। उन्होंने इस ताल्लुक न बेहतर इश्तराक और कसीर रुख लाए अमल अख्तियार करने पर जोर दिता। तो इसके नाल गोजरी खबरों की बुलेटिन खत्म हुआ।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। इस समय राष्ट्रपति राष्ट्रीय फिल्म समारोह को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: मैं एक बार फिर सभी पुरस्कृत फिल्मों से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। समाज और राष्ट्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर बनी फिल्मों का चयन करने के लिए मैं जूरी के सदस्यों की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि प्रत्येक रीजनल जूरी में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे आज जितने कलाकार पुरस्कृत किया गया है कलाकारों को, उनमें से बहुत सारे महिलाएं हैं, इसलिए जूरी भी महिलाएं होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के दृष्टिकोण को शामिल करने हैं करके ही समग्र मानवीय दृष्टि का निर्माण संभव होता है। देवी और स्वजनों, आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि हैं। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायकों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान की सराहना की। उन्होंने 2024 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता अनंत नाग को भी बधाई दी और फिल्म जगत में 5 दशकों से अधिक के उनके योगदान की सराहना की। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
2: जब G20 हुआ था भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में हर राज्य में हर एक यूनियन टेरिटरी में मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वाज एन एग्जांपल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आवर कंट्री कैन बी शोकेस्ड टू द वर्ल्ड।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कोई एक संस्था, क्षेत्र या राज्य अकेले नहीं कर सकता। जल प्रबंधन के लिए अधिक सहयोग और समन्वित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के उद्घाटन अवसर पर यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मादक पदार्थ रोधी कार्यबल के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य मादक पदार्थों की समस्या से भावी पीढ़ियों को सुरक्षा प्रदान करने पर विचार विमर्श करना है। सरकार ने कहा है कि यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR पर GST से छोटे व्यापारियों पर बोझ नहीं पड़ेगा और न ही डिजिटल भुगतान महंगे होंगे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऐसी रिपोर्ट को गलत बताया है। NPCI ने कहा कि MDR केवल 2000 रूपये से अधिक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर लागू होता है।

एनपीसीआई ने कहा कि 2000 रुपए तक के व्यक्ति से व्यापारी लेन देन पर एमडीआर शून्य है और इसलिए जीएसटी का कोई प्रभाव नहीं है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी के जापानी सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। एलडीपी के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो के महानिदेशक तारो कोनो प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री तारो कोनो पहले जापान के रक्षा मंत्री

दरअसल पैंतीस लद्दाख गजल रेखने न्यूत पिन मीडियम वेविका अचैस आकाशवाणी कारगिल कना जरिन्यूत वक्सपोत सुत त्रुगन फेतसों सुख कसता प्रोग्राम यन मजद सगेत पानीफिया प्रोग्राम शुचुखन पॉइंट मोहम्मद हुसैन प्रोग्राम प्रोड्यूसर गुलजार हुसैन।

0: बिल्कुल बिल्कुल मकसद जो मत मेहनत बस मैंने अच्छा करना चाहिए था जो छाना ये ब्रो और गला जुस्ते का तब जी ब्रोन तब से जीवन यानों को जो गला जुस्ते का थक सर गया अपना दी ऋण पुंगा से चौकी पास लेन मत जो चाम चौमा चाम से दी निकल घिपिंग मत
1: कसा जो ऋण ना हजार लाचास के जी रिकता मत खचीस तामत बारह सौ तामत या हजारी का ना ये तामत पे आया से कम चिमेत मगर से नमन चाल लिखो ना खचे नमन आसमान ना थोबे जेरे नता आसमान या चाले खेरे ऋण ना ऋण जोमे दो जो दक्षा ना ला ऋण सौ सियो ना ला क्वांटा ला छह हजार री नस्फे तांग जो नस्फे तामत तीन हजार या क्वांटा तामत ये ब्रोफे तामत ब्रो खोरा खचे सोन लार्गो से सोन लांग से खेर बात सर
0: बेशक बेशक मन अर्थ मौजूद है अंतस ब्रोफेन जरे नस्फेन
1: मेहनत रंठा खेरे या फिर क्वांटल आचा छह हजार नानी जुनी छह हजार लेन मदीची उन सात हजार लेन इन सर डिमांड खुआ पेने तांसेस बिहारी खुई दें फिंग से गचा दिया उजिंग लेने तब से लेने दूंगा तांस सख्सों से शंगा से गते क्यों से कोई वो तांस गचा गचा गामा लोग से दून बस गचा चों बस
0: कैसा कैसा सेल पहले ग्रुप इस से यंत्र ग्रुप पुलांग से या दिस ऑफ़ ला जिंग यंत्र किरिया लेन मात्र है जो चाने दिस सेल पहले ग्रुप पर चो से लेक चाम चिसों या चाम चिक दुनी का ना यों कीट यों जो चाम चिक दी फंटोस दी यंत्र दिस सेल पहले ग्रुप पर चो ना चाचो
1: मन मेहनत बस बना नाता गाटा जस्टिक ना मान उमें दुया फंथोस पुंगाता बा शेज नाता फंथोस मन मामो सर गचाज बसिन 2015 या नाचा हेल्प सेलिफ ग्रुप चोस पिन देखने लगती गाचा कोले कोले आगे गाचास ना लचास रिक्चा ताबत पिन जिंग ले गाचास हास तब से देना गाचा दून मार्केट है गाचास सप्लाई बाद देखना गाचास कोले कोले जिंग लेने जिंग तब से जिंग नास तब से नास सोचा बाद देखना गाचा छुला ब्रो तब से ब्रो सोचा बाद सर दून गाँव में गाचा यम्बो यम्बो बात पाया
0: कैसा कैसा बिल्कुल बख्शिश तहसील वाले ग्रुप पे अनुयंत सिर्फ सहती लस पुसा यंतांग सेलेब ग्रुप पानी लेंचा जिना बचा जिना यदि बगैर यंगा सो लस रिगंती सेलेब ग्रुप इस बाजू
1: यंग असल फेलेब ग्रुप यानो दिया ला सुन बात सर छास तब चा ज्यादा छास का फोकस हो मदिया
0: या या
1: छास यंग मन गते हर चीज बो गोभी फल फूल गोभी बन गोभी जरबान यंग अति फ्राइज बीन जरबान अति खीरा जरबान सोलर तब चीन सर फेंस नचा सोलर तंसियोत मचा आल जेरबान दुन गाँव माचा सोलार या तपचिन सर इन गते हाग जेरबान बहेला तपचिन गाजर उन बहेला तपचिन सर दुन माने जिंग या तबत पसर या
0: कैसा कैसा बिल्कुल छाना कौन से यंता दी सहित प्लगेट चना खास कर नती छाज यंते तबत जैस छाज उन तब चना दुल लगता सोन गोसा जो हाइब्रिड सोट उन सोन उन गोस और गला क्वालिटी सोन क्यों मर गोस या दी सोन उन ला सोन क्यों चना स्पोचा क्यों चना या जो एग्रीकल्चर पीस एग्रीकल्चर पद यंता सेलेब ग्रुप उन ला रोक्स बाता की यंते स्पोचा खुरा यंते फिंग मता दत जोर से गोमे का दी छाज बिगेट पत
1: कसा जो पहला पहला ना सुन ना मना गति मना स्नल ना गाची यूल यानो मना एस जी ग्रुप जेरे हेल्प सेलेक्ट ग्रुप जेरे मना सुम का तो जी का तो मैंने मना योद में 2013-14 यानो दक्षण ना गता पॉपुलेशन तो बड़ी छह हिसाब ना मना क्यों मचो से चोसे सुन तंग मत दक्षण ना कोई सुन तंग मत या गते में खाने सुन पुंगते बाजार ना लग मोलग मसोन न्यू से क्यों चा कोई दक्षण सुन तंग मत या नो खचिक का तो जद में डेस यो मत या दुन गते जक्स गते लग मोन तब से या मना गचुक चीज गतेज मना तब तब ना गता मने मिछे सवाल मिंदुक सारे गचा मना हर चीज पुंगती बेंगान जरे या गती शिमला मिर्च जरे ब्रोकली जरे मना दुन गामा गचा सोलर है तब चिन दुन गामा सोलर है छचिन बाकी गती हाग जरे या गाजर जरे चों जरे दुन गामा गतेज बाहर ला तब चिन सारे
0: बिल्कुल मक्षिज जैफी जबान मना रदे मो मोलिनुत पिंकी ताजवेरी जासुन पिंगतेज छास ना या सागी

0: энэ шиг гэвэл одоо өргөний лаб өргөний чуулган одоо өссөн байна. Өргөний бас баг гранд бус бас энэ тийс хэлэм юм одоо ингэ баг энэ мэжүү. Энэ нэн юл момо атэс солар я чусе сонор солар уу нэг атэс сунман өргөний забус гэдэг үнэ нэг юм. Момоз натаа том бачит ки өргөний дил засвэн байна. Лифи вегетабл гамма одоо солар яг батта сабзи натаа таба тоожу. Чаны энэ тийс лебл грубис янтэс хас карьерас дүн нэг гац рохши бас гац ярас жохши ка мехнат бас я ди солар он тапча зинжу чи чи ди солар бен нентес таба шача зин
1: каса жу солар я нома ча ди ан та бат сар нчас хира та бесап се пехла нас биа ди темпи ану гуни темпи ана ата дун чаме ди хира нчас мана лаг ба нчас дед квантал квантал ри нчас маркети ану нчас биа лас пулай ба ди ал зере дун гама бенган зере гуни филана ати локал шан та зере я палак зере я
0: Дянта бацаря. Мекул мекул. Бахшиз физла бану ата шанта тусун я ата журкам тусун гун ла янта сахжу мати солар ра тапча дин зу. Дир гун ла тапкани ди солар ян ткани сунман янта сири бран заво шипшин мата ки ян дун писта цон ми фра лукс бачу.
1: Гун гун ла на ман де сабиз бяр ла фими хесаб чи ми бин ма сар ната эк тун ата грамо зион се хаши ко чош хаминду пе солар ин на санан ग्रामोज बसेंगे या जनवरी ने फरवरी अनु माना ग्रामो ज्यादा यू माना कम काम लिपिंगे या दिया क्यों सोचा छा मिल कम काम भी सोचा छा सर
0: बिल्कुल बख्शीश विजा तैयार से अंतर दो मोल यूनिट पिंक की अंति सेहत निका सेलेबल ग्रुप इस मेहनत बस से एक डेढ़ कंट्रोल लिखे अंत से जो पुरस् पे अनु को खीरा चौक सुन बाजार चौंकिन जैसे मार्केट यानी ग्रेट कंट्रोल यानी चौंक मना या मार्केट यानी चौंकान जा पता थो का तंग मता घर घर मालसा निकल ची बसे चौंक मजू
1: कसा जो खाची नंगाचा या खिरकांग या नंगाचा मार्केट यानी नंगाचा देने बसे तंस यू मत बरगा नंगाता बमो सर्जेस तंस नंगाता दिया का बाजार लयों से नंगाते चौंक से नंगाते देने बसे छात सर
0: कैसा कैसा बिल्कुल दुख ना कतो यंत्र से दुख सेंग देगा
1: दुख सेंग आज सोम बसर
0: बाकी स्थानीय सहेल पर गेट साना आता स्पेरा मरा मामूची स्नाग जा प्रभु सच फिजा बनो दरे जरना गति यस्तित करगिल गति पूरा खेते लगाख गति जरना आता ऑर्गेनिक डिक्लेयर सोंग सिंजो ऑर्गेनिक जरबान जी ऑर्गेनिक इन में मलसान यानो गति केमिकल इन में लूट जरे स्मन जरे चंग गति तब जमें जो छाना प्योर ऑर्गेनिक इन में गति चला गुन गति जान तब से जिन फिंग में फ्रलुस बचा जिन छाना यंती से लेवल ग्रुप पे अनुक सहेल लगेत सना थेसे संग सुनमा आते गेट बात बचाना या गचोल जोख शिकल लूट तंग मजू ची चीस मन थांग रिकॉल बात जून लबू सिगरिक नाद्रियोना गचोल जोख शिकल ते इलाज बचा जिन
1: कसा जो लूट जरे गति स्नान लगति कोले ने चुना को लूट जरे कर पो लूट जरे दून तांग ने चुन लेकिन गचा सास खोरा ना माना लूट मा मितांग मत सर यहाँ गति बिन खाने नोरी लूट जरे बलांग लूट जरे ध्यान ध्यान गचा स्तांग से गचा सास लतांग मत सर
0: बिल्कुल कसा गति खामा ने बिन खाने लूट
1: खामा ने बिन खाने लूट
0: ता सर कसा बिल्कुल खामा ने बिन खाने लूट यानो ना कसु कसु लूट कोले जुचे जब ना गता दसा लुट मामो गता हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पाइन जो फेस संखास का गति सुकाज डिपार्टमेंट ने साइंटिस्ट ने गता गंज जीवा अमृतन हजु गता एक्चुअल सबिन तिन दु मेन मा लुट मन मामो रिक गति वार्मिक कंपोस्ट सोसन गता एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वर्चुअल सबसे जि तोसी सोमो सोमो लुट ओस्चो से सेहत का कोल भी प्रोडक्शन मा बसा
1: मजु कसा गचास सबसे पहला गचास बाजार न गचास नखपो गति नखपो प्लास्टिक न्यू सिक्यों स्पिन सर गचास दुसो बसे प्लास्टिक छों सना गते या खड्डे गो न खड्डे चोचिन में न कतो या दिया गति इंजुर निमा चिका गते दु जख सना दे क गते नोरि बिल या लोअर योदना या रमा योदना दुनि बिल पुलुत पुस दु सिक्यों चा या बलांग शिलांग तां से दु थख से बगबग बसे पन दु दु सिक्यों सेंगते दुर दमो बसे चख सेंगचा दे प्लास्टिक पिता मसर देखना देखा गचास बलांग यूरिन पुजुने गचा मन दे लुत पियास्ते से तां से दियानो प्लास्टिक कप से जख से खोंगे मा फोक चुपाना को पोक जुले लुत दाने दुसारिया
0: कसा कसा बिल्कुल ता दे रुलखानी लुत पो दोचन शाशी से ता दिरिंग सपाते खामाने बिन खानी दे लुत उन कोलबत पिंजु गांग पो दोचन ची शाशी
1: दोचन पो गाते दक्षन चोखानी लुत पो दोचन छेन दुसार गाते गाचुक शियो नया मना क्यूमो बसे गाते बला यूरिन पुमतंग आतंग मन हमेशा यम बो दुख से जुने मन दया तंग मना दु जुलेन दुख मन पोख जुले थलबा चुख छेन दुख मिना मन दु लंग आते मन सरकारी लुत तंग खाना गांग मन सरकारी लुत तंग से इन चुग जाचा लेकिन आचा सरकारी लुत मन छाज लम मन यूज बचा मेन सर मन तंग अचानक जिंग में ताना तंग चिन छाज खोरा लुत मन गाता सरकारी लुत पुकोल भेसा पुंगाता स्नोत खे मेने मन फन खे मन यो मेन दुख स्नोत खे मेने दुला गाते चिंग एन गाते मेहनत बसे दुजुने बलांग यूरिन पुजुने गाते ध्यान नोरे लुत पेस्टे से गाते दम तंग से प्लास्टिक लुंग मिफोक चबा से गाते दम तंग चिंजू लेकिन मेहनत चिर गया नाचा छास पोसर

आकाशवाणी करगिल के स्टूडियो से हमारी आवाज जहां जहां तक पहुंच रही है उन सभी सुनने वाले सामेईन तक एक मर्तबा फिर हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। ये सिर्फ और सिर्फ आप अजीज ख्वातीनों हजरात के इखलास और तशवीक का नतीजा है कि आकाशवाणी करगिल हम वक्त और हर पल अवामी उमंगों का सच्चा तर्जुमान बनकर एक एक मौजू का मुहासिबा करते हुए आपकी समातों तक तमाम तर मौजूआत की रसाई को मुमकिन बनाने की शिद्दत से पहल और कोशिश करते चले आ रहे हैं। उन तमाम समीन मोहतरम के एहसानात के हम क्रूज हैं जो वक्तन फवक्तन आकाशवाणी करगिल से जुटकर हमारे साथ हर मौसम और हर पल शरीक सफर रहते हैं और हमारे मखसूस प्रोग्रामों का लुत्फ उठाते हैं। मोहतरम सामईन, आज अक्टूबर महीने अबों को हकीकत में बदलने के लिए बेहतरीन रास्ता दिखाता है। सामईन मोहतरम, तारीख गवाह है कि जिन कौमों ने अपने दरमियान बेहतरीन कयादत को पहचाना और उसकी पैरवी की वो दुनिया में तरक्की याफ्ता बन गई। ख्वाह वो सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद हो, अशफाकुल्ला खान हो, सुखदेव हो, राजगुरु या महात्मा गांधी हो, इन सब ने मुल्क व वतन को गुलामी की जंजीरों और जिंदा की तारीकियों से निकालकर आजाद फजा में सांस लेने का जमीना फराहम किया। अब मैं और आप सोचेंगे कि समाज का ये तबका इस कदर लोगों के दिलों में क्यों काबिले ताजीमो तकरीम का बाइस बनी, तो बिला तरद्दुद ये बात कही जा सकती है कि इन रहनुमाया ने वतन के पास एक तरफ ईमानदारी और दियानतदारी थी तो दूसरी तरफ दूर अंदेशी, फैसला साजी की कुव्वत, अवाम से ताल्लुक और कानून पसंदी और इंसाफ को

गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास पीएमईजीपी का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चिकी ग्रल से बसगांव जम्मू कश्मीर ईआरटीजे डायरेक्टर बलविंदर सिंह ने डिप्टी डायरेक्टर नविंदर सिंह के वीआईसी लखथुतिकम हलेंख्यों से दिवस न खास पौनिस कॉलेज इफ्रून ने पीएमईजीपी ने एलोसो सरकार इसी की मिनिस्टर लिखा लसके वक्सन फिंचन इफ्रमा चिक फंथो उन्नीस को लह गो उन्तास यहां रिसोर्स पर्सन उन्नीस डिग्री कॉलेज प्रिंसिपल लफ्रून इमीना दिखाखन प्रोग्राम पु मलेंख्यों मीना इज इन तांचा स्पेकर यूजेस खोजा दि प्रोग्राम पु लक्ष्य नयम्बो रलसिर बसे थमा थन चुक मिमी ने बस खन रोक्स पेकन कॉलेज खाकुर ने फ्रालुक सुनिस तो द्राम बस दयाना चौसा कॉलेज पॉलिटिकल साइंस महकम में असिस्टेंट प्रोफेसर से रिसोर्स पर्सन उन कॉलेज इंतजामिया दुना खक लिन खन फ्रून ला सिंखम ने बो थमा थन चुक मिमी ने रोक्स बचस पेका ओजु जरिन चिक प्रोग्राम पु थमा थन सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू दिनीशाम ने गुजराती एकता नगर और दुनचु नंगी सिरसिस गैस्ट्रिटी फिल्म अवार्ड पुरस्कार पसंदी अवार्ड सक तामिर छिरपो सनलोस्तोंचिक ने गुबिया नगबचु नजफी ने फलगा गुजु सोंखान इनमिन गाज बसे सिनेमा ने फीचर गैर फीचर दुनस ग्रुम्स ने लोकसोफियो सुनियानु लक्ष्य तकनीकी महारत पु आयशी बेंचिस गैस्ट्रिटी सक बसंग गेला सिनेमा रि नर्सिस पेश तक पछा जरे सर बसों इलाना नशरियात विजारत इशोक ने छोको पॉलिसी चिगी गुम्बा चिगी जोस्ते का अवार्ड दी तकरीब उस गैस्ट्री तिरगल सना फिस्ता आयंग अर्गल खा खची गया छेंची की तिंजरे जर से सदर जमहूरिया जमीन भी अदाकार अनंतनाग सनालो संगी संग इशुर सज भी दादा साहेब फालके अवार्ड पोंगता हुसैन अलमुंतजर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पश्चिम खुरी नाइब सदरी गोयत ने लद्दाख राव रीड यर्गे से काउंसिल करगिल गोबा डॉक्टर मोहम्मद जाफर अखो नेम्बो थुक से ग्रब शिक मिल एंखोंस दे वक्सला सोपास हिल काउंसिल गोबा पाशको मिखातन शमंगी सिसको लजर बसों गवाने चिकपु हुसैनी ब्रिज पे कने छुला से सुपे लिंग रोड पु सिंखम चंचिक में चास बसे मीमा सुन फेसे सा थरमान ने स्कूल इफ्रुना थिक में दिरकब लज भर दुन थो इंच गियो तिन जरा जर बसों दियो नजम से लम पुला फलता चने एम्बो एम्बो तालको लान थो अमरगो सुख जरे शुवा बस ध्यान चौक ने एशमान चिकपु पीएम श्री गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पश्चिम में हिसाबी टीचर मेद पर इंजरेन फेस एसान जमात और स्ट्री शेसलिन कंट्रोल ला दिजी गिशे सिलो एनुक समेत ला नक्सबर्दों थों से इंजरेन ग्योक्सपा दी स्कूल पे क्या हिसाबी माल्टर्स चिकता वर्गो सुसरे जुआ बस गावे के सीसी देना वसला आरएनपी महकमा ने शेसी महकमा करगिल ला दिशमांग निस्का चिंगन ग्योक्सपा बसे फलते बोजरे खचन खसकोन तांसिन दियो नजम से छपास हिल काउंसिल गोवा खो इशमांग यंचस पे का ओजू जरन ग्योक्सपा बसे दिशमांग निस्का फलते बेमीना फ्रालुक्स बे और थियंग मबस इदलान नशरियाती मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव वजीर अजम नरेंद्र मोदी के नशेस लेने स्त्रीति फिल्म अवार्ड पे मेजबानी उस गैस्ट्री मीम भी सरिया से मलसान साहका मलियंखों चंद्र जरसद अहमदाबाद इन अम्बरेलथा अलहिब सरगबना जिना वैष्णव फैसे सा एकता नगर गांव में नुगमियुल गांव पे मीम भी उस गोश पे चिकजिल पो कायम यो तेंद्र जरेन गांव में सदर जमहूरिया दुना मीम भी फिल्मी गोयत ने दुना मलियंखों सन तकरीब पुना मियुली सरिया से उसको लह गोय नुक्स के दियो चंद्र जर बसो मरकजी वजीर से गलखा के सरकार उन गांव आदि इसको ल रंग रंग समझुन मन चुकचा सिन गांव में उस के स्थिति फिल्म अवार्ड पे यो में तकरीब पे मेजबानी मलियानु खों चंद्र सर बसो रजिस्ट्रार जनरल ने सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया मृत्युंजय कुमार नारायण इस खुरी छपा नेम्बो संस्कार जिले जिक्सकोर बसगांव ला जंगले गम्युल्ला सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट संस्कार ने संस्कारी माली महकमा फेफसूस बसखान इन मिन देवरंग उफ्ती पीपीतियां टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर ला मुतालका महकमा ने खाकुर नेम्बो ग्रफशिक मलेंख देवरंग ग्रफ से वक्त सेंसस न थुत उत्खन शमाउनिका ग्रल सिर बेमिर्सी से खाकुर न लोकल इंतजाम ये बरंग लखथुत पेका अंगतास ध्यान चौसा मिस्ट्री से लजोन लक्ष्य नंगेम्बो थमाथन चुपीमीना संस्कार लोकसो महकमा निखा उन्नीस को लाजर इंचिक दी खचन लसपु घरिया बसे थमाथन चुपीमीना लखथुतपुर तनपुर से फ्यूक्स पेकांग स्पेरान तांसेन वजीर अजम नरेंद्र मोदी मीमा से खदमात लोंगीशुर चगाव घरिया छेंची की तिंजर जैसे जन सेवा से देश सेवे मंत्र ने खिचन खक पुरेंगेम्बो दी बैसा दुल्ला बिंग सेंजर दसन इन नसा डू लेंची की तिंजर जर बसों सेवा ने सुशासन खोई नजरिए कना लमस्तन पु अशी बेंचिक सरकारी सनलोस नंगीज ने इशुंगीज नरदुन सुखपा विकसित बाहर आती तोन पु लगा खो मी फ्योस प्यांग लखथुत बसे लजबेंची की तिंजर जरीन खुदी फेसपत सिर पे नाजों सुगत सोसला दी समझून पीएलआई स्कीम पेस्ट्रोली का हकीकत गिरजा खोसिन देश को लांसल पो बसे हगो उन्तास वीफोर ने भारतीय फिरमाए वजीर ने गोमाग्राफ्स पर न्यूयॉर्क अकवामे मुत्तहिद जनरल असेंबली कने लोकसभा माले खोस गवासलस गैस्ट्रीटी फिरमाए वजीर डॉक्टर एस जे शंकर इस खगलिस ध्यान चोसला ग्राफ्स ने पोलैंड हंगरी सलोवाकिया दुने चेक जमहूरी फिरमाए वजीर उन सगा जुक सेत में दिग्राफ्स वीफोर पोय सदर सलोवागी गोयो ते अनुग माले खोस गवे वजीर इन भारत ना विश रिगार्ड सपे बरे लजुन सख छुटन से दोस्तान के समझुन उन चुक से दिवसला खगलिन खन फिरमाए वजीर इन टेक्नोलॉजी दि फास्ट ट्रोनोस कनेक्टिविटी शेस दुना एक हफ्तान फोन सख ग्राफ्स पे अनुक स्ट्रेस इन तमिलनाडु वजीर आला सी जोसफ विजेस दिनी गलखा सरकारी स्कूल उन गामियन जमातरु एकना जमात अर्गत सपिशेस लिंकन फ्रून मीना नंगसा निग्रल सी रिसी किम बोला गोजुक बस तस्मे मीना जना सरकारी ना सरकारी कना रुख सो लेने दुलखन स्कूल स्टोन चोगाने जिबगे ना गपचु ने फिनो निमर शेस लिंकन फ्रू मिंगा लाख सुनचु

0: दरअसल पैंते स्पुर्गी खबर ऑनलाइन यानी न्यूज़ पिन मीडियम वेविका आचेस आकाशवाणी कारगिलिकना जरी न्यूज़
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: Midem wi wi ka ngache sa akashwani kargili kana sirinyut waspot su tur dunne minet ngi shungi sons ka sata akashwani sirnegeri kana ordiano khabaruna tafsira rilebet rilela dangwazat
1: नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ होम ऑटो पर्सनल पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से SBI द बैंकर टू एवरी इंडियन नियम और शर्तें लागू
2: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास सही पोषण भरपूर प्यार

0: गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
1: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
0: आज ही अपनी नजदीकी आंगनवाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं शबीरुज़्ज़मा। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। कानून साज असम्बली के दूसरे रोज आज मुत्तहिद अरकान की तरफ से मुख्तलिफ नवियत के अवामी मसाइल उजागर। वजीर आला ने जम्मू को पूरे साल का एक कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह का सियाहती मरकज बनाने का दोहराया अज़्म। ऐवान असम्बली में तफसीली बहस के बाद जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज तरमीमी बिल 2026 पास। असम्बली में राइट टू एजुकेशन एक्ट में तरमीम की गरज से करारदाद पेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मसनूई जहानत के दौर में टेक्नोलॉजी को मुअसर और मुनसिफाना अंदाज में बरोई कार लाने पर दिया जोर। और नई दिल्ली में एंटी नार्कोटिक सरबराहों की दो रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। कानून साज असम्बली के मौसमी खिजां के इजलास के दूसरे रोज आज वक्फे सवालात के दौरान अरकान ने अवामी नवियत के मुतअद्दिद मामलात उजागर किए और मुतल्लिक वजीरों से उनके जवाब तलब किए। खुराक व सिविल सप्लाईज उमूरी सारिफिन के वजीर सतीश शर्मा ने जीए मीर के सवाल का जवाब देते हुए ऐवान को जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर के 355 ग्राम पंचायतों में से 221 ग्राम पंचायतों में वन पंचायत वन प्ले फील्ड पहल के तहत या तो पहले से खेल के मैदान मौजूद हैं या वहां नए मैदान कायम किए जा रहे हैं। वजीर मौसूफ ने हसनैन मसूदी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर भर में फेयर प्राइस शॉप्स का एक वसी नेटवर्क कायम किया गया है और पांपोर हलके में कोई भी इलाका इस सहूलत से महरूम नहीं है। सेहत व तबी तालीम की वजीर सकीना ऐतू ने मीर सैफुल्ला की तरफ से पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में कैंसर बीमारी पर काबू पाने के लिए ढांचा मुस्तहकम करने की गर्ज से एक एपेक्स कमेटी तश्कील दी है और इस मकसद के लिए डायरेक्टर सिकिम्स को नोडल अफसर नामजद किया गया है। वक्फे सिफर के दौरान भी आज कई अरकान ने ऐवान में सड़क, पानी, बिजली, तालीम, ज़िराअत, तिबी निगहदाश्त, डिजास्टर मैनेजमेंट, बल्दियाती सहूलियात और दीगर शोबों के मसाइल को उजागर किया। मुतल्लिका वजीरों ने उन अरकान के सवालों का जवाब दिया। जिन अरकान ने वक्फे सिफर के दौरान सवालात व ज़िमनात उभारे उनमें खुर्शीद अहमद शेख, सज्जाद गनी लोन, मीर सैफुल्ला, पवन कुमार गुप्ता, कैसर जमशेद लोन, बलवंत सिंह मनकोटिया, निजामुद्दीन भट्ट, एजाज जान, अर्जुन सिंह राजू, चौधरी इफ्तिखार, शफी अहमद वानी, एम वाई तारीगामी, गुलाम मुहिद्दीन मीर, प्यारे लाल, अल्ताफ अहमद वानी, रफीक अहमद नायक, राजू भगत, वहीदुररहमान पर्रा, अब्दुल मजीद लारमी, सलमान सागर, दिलीप सिंह परिहार, सुनील भरद्वाज और मेराज मलिक शामिल हैं। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू सूबे में सियाहती सेक्टर को तकवीत बख्शने के लिए हुकूमत ने एक जामे और कसीर रुखी हिकमत अमली इख्तियार की है और नए सियाहती मकामात पर तवज्जो मरकूज करने के साथ साथ जम्मू सूबे को कौमी और बैन अल-अक़वामी सतह का सियाहती मकाम बनाने के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं।
1: With emphasis on developing existing tourist destinations, opening up new and emerging destinations, strengthening tourism infrastructure and promoting Jammu as a year-round tourism destination at the national as well as international level.
0: असम्बली में युद्धवीर सेठी के सवाल का जवाब देते हुए वजीर आला, जिनके पास वजारत सियाहत का कलमदान भी है, ने कहा कि तरक्याती इकदाम के साथ साथ जम्मू के सियाहती मकामात से मुतलिक तशहीरी सरगर्मियां भी जोर शोर से जारी हैं। वजीर आला ने सैफुद्दीन भट्ट के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर के हरेक सियाहती मकाम पर गुलमर्ग की तर्ज पर सियाहती बुनियादी ढांचा कायम नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हरेक सियाहती मकाम की खसूसियात को मद्देनजर रखते हुए उनके तरक्याती मनसूबे मुरतब किए जाने चाहिए। वजीर आला ने कहा कि हर एक सियाहती मकाम को गुलमर्ग नहीं बनाया जा सकता, तहम इन मकामात पर बुनियादी ढांचे को उस्तवार करने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। विक्रम रंधावा के सवाल का जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत बिजली सार्फिन के लिए एमनेस्टी स्कीम दोबारा मुतारिफ करने पर गौर कर रही है, तहम उन्होंने कहा कि यह उन सार्फिन के साथ ज्यादती होगी जो अपनी बिजली बिलें वक्त

0: जिसके तहत आज कानूनसाज असेंबली कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में एक पिलेज और खसूसी स्वच्छता दस्तखती मुहिम का इनेकाद किया गया, जिसमें वजीर आला के अलावा तमाम काबिनी वजरा, अरकानी कानूनसाजे और कई दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर स्वच्छता की अहमियत को उजागर करते हुए लोगों पर जोर दिया गया कि वह अपने गिर्द नवा में सफाई सुथराई को यकीनी बनाएं। वाजरे की यह मुहिम स्वच्छता में सहभाग स्वच्छ भारत विकसित भारत के तहत 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी। हजरत सैयद मोहम्मद सईद हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह के यौमे विसाल के सिलसिले में उनके आस्तानी आलिया वाकस सोईबुग में आज खतमातुल मुअज्जमात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजालिस मुनक़िद हुई, जिनमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और मेंबर पार्लियामेंट सत शर्मा ने आज जम्मू में एक मीटिंग के दौरान सेवा संकल्प अभियान के ताल्लुक से पार्टी के प्रोग्रामों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वह आवामी बहबूद के लिए शुरू की गई स्कीमों के फवायद से लोगों को रोशनास कराएं। उन्होंने कहा कि सेवा संकल्प अभियान की बदौलत बीजेपी का समाज के साथ राबता मजीद मुस्तहकम होगा। बीजेपी के सीनियर लीडर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने मुख्तलिफ शोबों में भारतीय मईशत की तरक्की का खैर मकदम करते हुए कहा है कि इससे यह बात वाजह हो जाती है कि आलमी चैलेंजों के बावजूद यह मईशत मुस्तहकम हो रही है। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा है कि यह तरक्की वजीर आजम नरेन्द्र मोदी की दानिशमंदाना क्यादत का नतीजा है। सीनियर जुडिशल ऑफिसर यशपाल बोरनी को आज श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के जज की हैसियत से हलफ दिलाया गया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर जस्टिस पुष्पिंदर सिंह बट्टी ने उन्हें ओहदे का हलफ दिलाया, जबकि अदालत आलिया के रजिस्ट्रार जनरल एम के शर्मा ने तैनाती का वारंट पढ़कर सुनाया। इस मौके पर हाईकोर्ट के कई जज साहिबान, अदलिया से जुड़ी कई दीगर अहम शख्सियात और पुलिस व सिविल इंतजाम के कई आला अफसरान भी मौजूद थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज एकता नगर केवाड़िया गुजरात में 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स अता किए। फराज को ओबुर फिल्म अवार्ड के लिए बेस्ट स्क्रिप्ट अवार्ड दिया गया। इस फिल्म में हिंदी और कश्मीरी जुबानों में स्टोरी टेलिंग रिवायात को बरकरार रखा गया है। इस मौके पर इत्तला नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अवार्ड जीतने वालों को मुबारकबाद देते हुए पर्दे के पीछे काम करने वाले पेशेवरों के रोल की सताइश की। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। कानूनसाज असेंबली के दूसरे रोज आज मुत्तहिद अरकान की तरफ से मुख्तलिफ नवियत के अवामी मसाइल उजागर। वजीर आला ने जम्मू को पूरे साल का एक कौमी और बैन अलाक्वामी सतह का सियाहती मरकज बनाने का दोहराया अज़्म। ऐवानी असेंबली में तफसीली बहस के बाद जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज तरमीमी बिल 2024 पास। असेंबली में राइट टू एजुकेशन एक्ट में तरमीम की गरज से करारदाद पेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मसनूई जहानत के दौर में टेक्नोलॉजी को मुअसर और मुनसिफाना अंदाज में बरोई कार लाने पर दिया जोर। और नई दिल्ली में एंटी नारकोटिक सरबराहों की दो रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस जारी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। एक कॉमर्शियल स्पॉट के बाद आप समाप्त करें कानूनसाज असेंबली में आज की कार्रवाई का खुलासा। हमें इजाजत दें, खुदा हाफिज।
1: जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही तय होता है कि बच्चों का कितना मानसिक विकास होगा और वो जीवन में कितना आगे बढ़ेंगे। हमारी आंगनबाड़ियों में बच्चों का प्रारंभिक विकास, सही पोषण, भरपूर प्यार, गर्म ताज़ा भोजन और खेल खेल में सीखने के माध्यम से हो रहा है। साथ ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पात्र धन राशि सीधे माताओं के बैंक अकाउंट में जमा कर सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित किया जा रहा है। हमारी आंगनवाड़ी हमारी जिम्मेदारी के संकल्प के साथ 9 सितंबर 2026 से 8 अक्टूबर 2026 तक मनाया जा रहा है 9वां राष्ट्रीय पोषण माह।
2: देश के हर गरीब हर व्यक्ति तक पोषण पहुंचाना भी सरकार की प्राथमिकता है।
1: आज ही अपनी नजदीकी आंगनबाड़ी से जुड़िए, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी है हमारी जिम्मेदारी।
3: सामीन आदाब, कानून साज असेंबली में आज की कार्रवाई का खुलासा लेकर मैं हाजिर। जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के खिजां इजलास के दूसरे रोज भी ऐवान में सियासी गर्मा गर्मी, मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर बहस और हुकूमत से जवाब तलबी का सिलसिला जारी रहा। इजलास के आगाज ही में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुल मजीद लारमी ने सरकारी तातीलात का मामला उठाते हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सालगिरह के मौके पर तातील बहाल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर ये तातील बहाल नहीं की जाती तो महाराजा हरि सिंह की सालगिरह पर दी जाने वाली तातील पर भी नजरसानी की जानी चाहिए। इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने एतराज

किया और महाराजा हरि सिंह के हक में नारे बुलंद किए। पीडीपी के रुकन वहीद परा ने भी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सालगिरह के अलावा 13 जुलाई के यौम शोहदा की तातील बहाल करने का मुतालबा किया। स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने वाजिया किया कि तातील देने या वापस लेने का इख्तियार स्पीकर के पास नहीं, जबकि रुकन ने सिर्फ अपना नुक्ता नजर ऐवान के सामने रखा है। बाद अजाम बीजेपी के अरकान ने हाउस से वॉकआउट किया। आज की कार्रवाई में बिजली के निरखों का मसला भी नुमाया रहा। हुकूमत के मुताबिक ज्वाइंट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन की जानिब से बिजली की निरखों में 6.83% इजाफे के नतीजे में माली साल 2026-27 के दौरान डिस्कॉम को तकरीबन 251 करोड़ रूपये की इजाफी आमदनी मुतवक्क है। हुकूमत ने इस नजरसानी को बिजली की फराहमी की लागत और वसूल होने वाली आमदनी के दरमियान फर्क कम करने और सालाना रेवेन्यू जरूरत पूरी करने से जोड़ा है। साथ ही बताया गया कि बिजली की खरीदारी के अखराजात पूरे करने के लिए हुकूमत को 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी बर्दाश्त करना पड़ रही है। इजलास को मुतल्ला किया गया कि जम्मू कश्मीर और मरकजी हुकूमत के महकमों पर बिजली के 4,385 करोड़ रुपए से जायद के बकायाजात भी मौजूद हैं। रोजगार के शोबे में हुकूमत की जानिब से पेश किए गए आदादोशुमार भी अहम रहे। ऐवान को बताया गया कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों में मजमूई तौर पर 64,439 आसामियां खाली हैं। इनमें 6,391 गेजेटेड, 42,572 नॉन गेजेटेड और 15,476 मल्टीटास्किंग स्टाफ की आसामियां शामिल हैं। खेलकूद के वजीर सतीश शर्मा ने बताया कि जम्मू कश्मीर की 355 ग्राम पंचायतों में से 221 में खेल के मैदान मौजूद हैं या तामीर किए जा चुके हैं। डोरो हल्के की 66 पंचायतों में से 37 में खेल के मैदान मौजूद हैं। लारकीपुरा के खेल के मैदान का काम 48,55,000 रूपये की लागत से तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है। डोरू स्पोर्ट्स स्टेडियम की अपग्रेडेशन के लिए तकरीबन 10,36,00,000 रूपये की DPR जेर गौर है। इस मनसूबे में पेविलियन, बैठने की जगह, क्रिकेट पिच, नेट प्रैक्टिस, मसनूई वॉलीबॉल कोर्ट और फ्लड लाइट्स समेत मुतअद्दिद सहूलियात शामिल हैं। वक्फ सवालात के दौरान राशन की फराहमी और फेयर प्राइस शॉप्स का मामला भी जेर बहस आया। हुकूमत ने बताया कि पांपोर असेंबली हल्के में फिलहाल कोई इलाका फेयर प्राइस शॉप की सहूलत से महरूम नहीं है, जबकि नई दुकानों के क्याम का जायजा आबादी, राशन कार्ड, जगराफियाई रसाई, दूर दराज और कबायली इलाकों की जरूरियात और दुकानों की माशी इफादियत की बुनियाद पर लिया जा रहा है। बिखरी हुई आबादी वाले इलाकों के लिए मियार में नरमी की गर्ज से एक कमेटी भी कायम की गई है। वजीर सेहत सकीना इतू ने बताया कि हुकूमत ने कैंसर से निमटने के लिए एक एपेक्स कमेटी कायम की है और डायरेक्टर सिकिम्स को नोडल अफसर मुकर्रर किया गया है। सिकिम्स, सोरा और GMC जम्मू में 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट कायम किए गए हैं। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग की मुनफरिद कशिश का जिक्र करते हुए कहा कि हर सियाहती मकाम पर गुलमर्ग जैसी गंडोला सहूलत फराहम करना मुमकिन नहीं। ताहम मुख्तलिफ मकाम की सलाहियत और नौयत के मुताबिक बुनियादी ढांचे को फरोग देकर मकामी लोगों के लिए रोजगार और माशी मौके पैदा किए जा सकते हैं। कानून साजी के मैदान में जम्मू कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज तरमीमी बिल 2026 भी ऐवान से मंजूर कर लिया गया है। इस बिल के जरिए 1989 के कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में तरमीम, 1999 के सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव एक्ट की मनसूखी और सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अबूरी इंतजाम की गुंजाइश पैदा की गई है। बिल पर अरकान ने बहस की, जिसके बाद इसे वॉइस वोट के जरिए मंजूर कर लिया गया। यूं आज की कार्रवाई में सियासी इख्तलाफात के साथ साथ बिजली, रोजगार, खेल, सेहत, राशन, सियाहत और कानून साजी जैसे बराह रास्त आवाम से मुतलिक मामलात ऐवान के मरकजी बहस रहे। ये था कानून साज असेंबली में आज की कार्रवाई का खुलासा। इजाजत दें, शब बखैर।

जय हिंद। फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए सुनने वाले तमाम सामीन की खिदमत में मेरा खुलूस भरा आदाब। तो आइए सामीन, संगीत से भरे इस प्रोग्राम के आगाज में सुनते हैं फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से गीत, जिसे गाया है पामेला चोपड़ा, मनप्रीत बारेर और साथियों की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी और संगीतकार जतिन ललित।

0: अभी आपने बेटा फिल्म में उदित नारायण और अनुराधा पोटवाल को सुना। लीजिए दोस्तों प्रोग्राम का अगला गीत बाजीगर फिल्म से विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की आवाज में। बोल है गोहर कानपुरी के और संगीत से सजाया है अनु मलिक ने। पहले सुने ये छोटा सा वक्फा।
1: खो गया इंतजाम।

0: किसका? गुड्डी की फीस का।
1: दिखा 20,000 का लोन तुरंत।
0: पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
1: लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत,
0: वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: काट दिया।
1: कोई डर खौफ ना करे अबू, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
1: पुलिस, बैंक, RBI वगैरह के नाम से आने वाले साइबर मुजरिमों के फोन या वीडियो कॉल से होशियार रहे, उन्हें कोई पैसे ना भेजे बल्कि फौरन पुलिस में शिकायत करे। अगर समझदारी नहीं दिखाएंगे
0: तो पैसे गवाओगे।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: अभी आप प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे फौजी भाइयों के लिए मीडियम वेव 684 किलो हर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी कारगिल से बोल रहे हैं। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में खबरें रिले करेंगे। रिले का थोड़ी देर इंतजार कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा, सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसका उद्देश्य देश भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड विकसित करना है। छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अगले दो दिन के लिए मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और जापान एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने देश का पहला स्वर्ण पदक जीता। पदकों की संख्या 7 हुई। पुरुष बैडमिंटन टीम और वुशु की स्टार खिलाड़ी रोशिबीना देवी से भारत को और पदक मिलने की उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सिनेमा भारत की विशाल सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सिनेमा विभिन्न भाषाओं, क्षेत्रीय दृष्टिकोण और सामूहिक

0: राष्ट्रीय आकांक्षाओं को जोड़ने वाले सेतु का काम करता है। गुजरात के एकतानगर में आयोजित ऐतिहासिक 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी पुरस्कार विजेता कलाकारों और फिल्म निर्माताओं को बधाई दी। राष्ट्रपति ने भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण रचनात्मक योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि भारतीय सिनेमा देश के साझा सपनों और सामाजिक यात्रा को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारतीय फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
0: रचनात्मक उद्योग से अधिक समावेशिता और प्रतिनिधित्व का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने फिल्म ज्यूरी और निर्णय लेने वाले निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही। राष्ट्रपति ने फिल्म निर्माण में पर्दे के पीछे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के महत्व पर भी बल दिया।
1: आप सब क्रिएटिव इकोनॉमी के प्रमुख प्रतिनिधि है। आप सब ये ध्यान रखें कि इस इकोनॉमी को योगदान देने वाले मजदूरों, छोटे कलाकारों, सहायों को और संघर्षरत लोगों को सम्मान मिले और सामाजिक सुरक्षा भी मिले।
0: प्रभावशाली फिल्म हस्तियों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पहचानने का आग्रह करते हुए राष्ट्रपति ने उन्हें स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देकर और हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन न करके युवाओं के लिए सकारात्मक आदर्श बनने की सलाह दी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि समारोह में फीचर, नॉन फीचर और लेखन श्रेणियों में वर्ष 2024 की सिनेमाई उत्कृष्टता को सम्मानित किया गया।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज देश भर के फिल्म जगत के कुल 92 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को 5 दशकों से अधिक के अपने अभिनय क्षेत्र के शानदार योगदान के लिए वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फीचर फिल्म श्रेणी में राजनीतिक थ्रिलर आर्टिकल 370 ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। निर्देशक रणदीप हुड्डा को स्वातंत्र्य वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्पण निर्देशक का पुरस्कार मिला, जबकि नाग अश्विन सिंगी रेड्डी की साइंस फिक्शन फिल्म कल्कि 2898 एडी ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का खिताब जीता। तमिल फिल्म अमरन के लिए राजकुमार पेरियासामी को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं तेलुगु फिल्म 35 चिन्ना कथाकाडू ने सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का सम्मान हासिल किया। अभिनय की श्रेणी में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संयुक्त रूप से मलयालम फिल्म भ्रमयुगम के लिए दिग्गज अभिनेता ममूठी और चंदू चैंपियन फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन को प्रदान किया गया। यामी गौतम ने आर्टिकल 370 में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय मिश्रा ने भक्षक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का खिताब हासिल किया, जबकि सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार संयुक्त रूप से महाराजा के लिए सचना नामिदास और मिथ्या के लिए रूपाश्री वरकड़ी को मिला। गैर फीचर श्रेणी में मराठी फिल्म भंगार ने सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता। वहीं निर्देशक आनंद एल राय को उनकी रचना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता का प्रतीक के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया। सिनेमा पर लेखन श्रेणी में संजीव श्रीवास्तव ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समीक्षक का स्वर्ण कमल अपने नाम किया। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी और तकनीशियनों, छायाकारों और पर्दे के पीछे काम करने वाले अन्य सदस्यों के योगदान को सराहा। श्री वैष्णव ने कहा कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों को विभिन्न पर्यटन स्थलों पर ले जाने का विचार भारत की G20 अध्यक्षता से प्रेरित है।
3: जब G20 हुआ था, भारत में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 को पूरे देश में कोने कोने में, हर राज्य में, हर एक यूनियन टेरिटरी में, मोर देन 60 सिटीज में 200 से अधिक बैठकें हुई थी। दैट वॉज एन एग्जाम्पल बाय विच द रिच एंड डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज ऑफ आर कंट्री कैन बी शोकेस टू द वर्ल्ड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRNewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि संप्रभु पड़ोसी के खिलाफ इस तरह की आक्रामक कार्रवाई क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के खिलाफ है। श्री जायसवाल ने अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ साथ वहां के लोगों के कल्याण के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दोहराया। उन्होंने हवाई हमलों में मारे गए नागरिकों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आतंकवाद को हराने की प्रतिबद्धता वाले बयान पर कहा कि पाकिस्तान को अपने बयानों के बजाय कार्रवाई और दृढ़ प्रतिबद्धता दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक दुनिया उसके दावों पर विश्वास नहीं करेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश और विश्व के लिए गंभीर खतरा बन चुके मादक पदार्थों पर कड़ा प्रहार करने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आज एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ANTF के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री शाह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि युवाओं के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने 2029 का रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा कि 2029 तक सरकार भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से उखाड़ने में सामूहिक रूप से सफल होगी। गृहमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नशा मुक्त भारत का रोड मैप अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध लड़ाई में भारत लक्ष्य, समय सीमा और जवाबदेही निर्धारित करके पूर्ण विजय की ओर अग्रसर है। दो दिवसीय सम्मेलन भावी पीढ़ियों को मादक पदार्थों के खतरे से बचाने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान करता है। 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मादक पदार्थों के नियंत्रण संगठनों के प्रमुख इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के माध्यम से इस दृष्टिकोण को व्यवहार में ला रही है।
1: गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम, जिसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी, वह आज देश में सरकारी खरीद के लिए एक प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। यह प्लेटफॉर्म खरीदारों और विक्रेताओं को एक साथ ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर लाता है। 2023 में टेक्नोलॉजी के जरिए ईज ऑफ लिविंग पर बजट के बाद आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कैसे जैम पोर्टल ने छोटे कारोबारियों को सरकारी खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सशक्त बनाया है।
2: हम भारत में आधुनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं, साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि डिजिटल क्रांति का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आज जैम पोर्टल GEM जैम पोर्टल ने दूर दराज के छोटे दुकानदार या रेहड़ी पटरी वालों को भी ये अवसर दिया है कि वो सरकार को सीधे अपना प्रोडक्ट बेच सके।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए जैम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने बताया कि जैम का कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है।
3: इसने जो एक्सेस दिया है, डेमोक्रेटाइज किया है पूरे खरीदारी को, एक तो वो पहल रही है। और आंकड़ों में अगर देखें तो 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार के थ्रू करा पाए हैं और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं।
1: जैम प्लेटफॉर्म पर विक्रेताओं की संख्या लगभग 3000 से बढ़कर 25 लाख से ज्यादा हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्यमों, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अन्य विक्रेताओं की बढ़ती भागीदारी के साथ जैम पूरे देश में डिजिटल सरकारी खरीद का प्रमुख मंच बनकर उभरा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, एक्स पर @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है।

0: शासित प्रदेशों और 21 राज्यों ने आज नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्रालय के साथ उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना के अंतर्गत अगले चरण के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने उड़ान को देश की सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक बताते हुए कहा कि इसने क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने के बाद सरकार का लक्ष्य देश में 100 नए हवाई अड्डे और 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करना है। अगले चरण में करीब 4 करोड़ यात्रियों को उड़ान योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। श्री नायडू ने कहा कि विमानन क्षेत्र में रोजगार 2014 में करीब 30 लाख से बढ़कर अब लगभग 77 लाख हो गया है। वर्ष 2040 तक इसके 2.5 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में कल तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 147 रन से हराया। स्मृति मानधना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भारतीय टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। वहीं भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को 3-0 से हराया। अब सेमीफाइनल में भारत का सामना चीन से होगा। उधर रोशिबीना देवी ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु क्वार्टर फाइनल में चीन की चू मेनसिन को 5-0 से शिकस्त दी। भारत 1 स्वर्ण, 4 रजत और 2 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकतानगर में वर्ष 2024 के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। जाने माने कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्तिक आर्यन, ममूटी और यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका प्रांतों पर पाकिस्तानी हवाई हमलों की कड़ी निंदा की। क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए इस्लामाबाद की आलोचना। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों के खिलाफ कड़े और निर्णायक कदम उठाने का आह्वान किया। कहा सरकार 2029 तक भारत से मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म कर देगी। और केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के अगले चरण के लिए 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समझौते किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat, honors veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saheb Phalke Award, Yami Gautam, Kartik Aryan and Mamuti received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces, slams Islamabad for threatening regional peace and security. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Center Inks deals with 21 states and union territories for next phase of Uran scheme, aims to develop 100 new airports and 200 helipads across the country. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. At Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking the medals tally to 7. Men's badminton team and Wushu star Roshibina Devi assure country of more medals. President Draupadi Murmu today conferred the 72nd National Film Awards for the year 2024 on top talents of Indian cinema at a ceremony at Ekta Nagar in Gujarat today. Addressing the film fraternity, President Murmu said, "Cinema reflects India's rich cultural diversity and acts as a bridge bringing together different languages, regional perspectives, and shared

0: Beijing sporting spectacle in Japan. The triumph took India's medal tally to 7 at the end of day 3. The women in blue reasserting its continental dominance by clinching a second successive gold medal at the Games, thrashed Sri Lanka by 147 runs in the final at Nisin. Prime Minister Narendra Modi congratulated the women's cricket team on the feat. The men's badminton team and Wushu star Roshi Bina Devi also assured the nation of at least a medal each at the Asian Games. Indian men's badminton team defeated host Japan in the quarterfinals. India will face defending champions China in the semifinals tomorrow. In Wushu, Roshi Bina Devi advanced to the semifinals of the women's 60-kilogram event. She secured a 5-0 win over Chu Man Sin of Macau in the quarterfinals. India's Aryan also moved to the quarterfinals as he fights for a medal. Indian boxer Jadumani Singh marched into the pre-quarters in the men's 55-kilogram preliminary round. Earlier, Sakshi Chaudhary entered the pre-quarters. In men's cricket, India narrowly avoided a historic upset, defeating host Japan by 2 runs in a rain-curtailed 5-overs-a-side one-off T20 international match at Sanur today. Benchmark domestic equity indices ended 0.4% lower today. The Sensex lost 330 points to close at 74,529. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents 72nd National Film Awards for the year 2024 at Ekta Nagar in Gujarat. Honours veteran Kannada actor Anant Nag with Dada Saab Phalke Award. Yami Gautam, Karthik Aryan and Mammootty received Best Actor Awards. India condemns Pakistani airstrikes on Afghanistan's Kunar and Paktika provinces. Home Minister Amit Shah calls for strong and decisive action against narcotics, says government will uproot drug trade from India by 2029. Center inks deals with 21 states and union territories for next phase of Udaan scheme. Red alert issued for extremely heavy rainfall over Chhattisgarh, Odisha, coastal Andhra Pradesh and Telangana for the next 2 days. And at Asian Games, Indian women's cricket team delivers country's first gold in Japan, taking medals tally to 7. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं माजिद अली। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुन्नार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मुनशियात की गैरकानूनी तिजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड तामीर करने का हदफ रखा है। आइंदा 2 रोज के लिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है, जिसके बाद तमगों की कुल तादाद 7 हो गई है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जोर दिया है कि सिनेमा भारत की वसी सकाफती गुनागुनियत की अक्कासी करता है और यह मुख्तलिफ जबानों, इलाकाई नुक्ते नजर और जाम कौमी उमंगों को मरबूत करने के एक पुल के तौर पर काम करता है। गुजरात के एकता नगर में तारीखी 72वें कौमी फिल्म अवार्ड की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने अवार्ड हासिल करने वाले फनकारों और फिल्म साजों को भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली तख्लीकी तआवुन के लिए मुबारकबाद दी। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारतीय सिनेमा मुल्क के मुश्तरक ख्वाबों और समाजी सफर के इजहार में एक कलीदी रोल अदा करता है।
2: सभी भाषाओं और क्षेत्रों की फिल्मों में हमारे भारत की छवि दिखाई देती है। भारत की फिल्मों में भारत के लोगों के सपने, परंपरा, संघर्ष और भविष्य की संभावनाएं भी है। फिल्म कलाकार बहुत लोकप्रिय होते हैं, उनमें देशवासियों को, विशेषकर युवाओं को प्रभावित करने की असीम क्षमता होती है। जो सफल फिल्म कलाकार

0: डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल के फायदे के बारे में बताते हैं तो करोड़ों बच्चे और युवा उनका अनुकरण करते हैं।
1: तकलीरी सनत में ज्यादा से ज्यादा शमूलियत और नुमाइंदगी पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने फिल्मों की ज्यूरीज और फैसला साजी के इदारों में खवातीन की ज्यादा शिरकत की वकालत की। सदर जमहूरिया ने मेहनत करने वालों के वकार के तहफ्फुज़ और कैमरे के पीछे काम करने वाले अमले के साथ मुनासिब बर्ताव की अहमियत को भी उजागर किया, जो फिल्म प्रोडक्शन की असल बुनियाद हैं। बाअसर फिल्मी शख्सियात से अपनी समाजी जिम्मेदारी को तस्लीम करने पर जोर देते हुए सदर जमहूरिया ने सेहतमंद तर्ज जिंदगी को फरोग देते हुए और नुकसानदेह अशिया के इशारात से गुरेज करते हुए उन्हें नौजवानों के लिए एक मुस्बत मिसाली किरदार के तौर पर खुद को पेश करने का मशवरा दिया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज गुजरात के एकता नगर में 72वें कौमी फिल्म अवार्ड्स अता किए, जिसमें साल 2024 के लिए सिनेमा में गना कदर खिदमात के लिए फनकारों को एजाजात से नवाजा गया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: गुजरात के एकता नगर में मुजस्मा इत्तेहाद के अजीम शान पस मंजर में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क भर के कुल 92 अवार्ड याफ्तगान को एजाजात से नवाजा। सरकर्दा अदाकार अनंत नाग को 5 दहाइयों पर मबनी भारतीय सिनेमा में उनके गैर मामूली फिल्मी सफर के लिए 2024 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। फीचर फिल्म के जुमरे में आर्टिकल 370 को बेहतरीन फीचर फिल्म के लिए स्वर्ण कमल मिला। सरकर्दा अदाकार ममूती को ब्रह्मयुगम के लिए और कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मुश्तरका तौर पर बेहतरीन अदाकार का अवार्ड दिया गया। यामी गौतम को फिल्म आर्टिकल 370 के लिए बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मिला। गैर फीचर फिल्म जुमरे में मराठी फिल्म भंगार को बेहतरीन गैर फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में नवे इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 का इफ्तिताह किया। इस 5 रोजा तकरीब में आबो हवा के लिए पायदार पानी के बंदोबस्त के मौजू पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। नेदरलैंड और जर्मनी इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 में शराकतदार ममालिक के तौर पर शिरकत कर रहे हैं। इसका मकसद बैनुल अक्वामी इश्तराक को फरोग देना और पानी के पायदार बंदोबस्त के सिलसिले में आलमी महारत के तबादले को यकीनी बनाना है। इफ्तिताही तकरीब के दौरान खिताब में नायब सदर ने कहा कि पानी जिंदगी और तहजीबों की बुनियाद है और उन्होंने इसके मुनसिफाना इस्तेमाल, बचत और मुअसर बंदोबस्त की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई वाहिद इदारा, शोभा या सरकार अकेले पानी से मुतालिक चैलेंजों से निपट नहीं सकता और उन्होंने इस सिलसिले में ज्यादा इश्तराक और तालमेल पर मबनी तरीक़ेकार पर जोर दिया।
3: वाटर शुड बी यूज्ड प्रीसियसली वेयर द रिक्वायरमेंट शुड बी मेट विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल क्वांटम ऑफ वाटर। दिस वाटर वीक सेलिब्रेशंस They are proved to be significant by bringing together the policy makers, experts and stakeholders to deliberate on the processing challenges of water management. I am informed that this year edition will see the participation of over 35 countries. I welcome all the delegates from all these countries.
1: ने मजीद इस बात पर जोर दिया कि इस मामले में कसीर फरीकी और कसीर रुखी तरीक़ेकार की जरूरत है, ताकि तकनीकी इख्तरा, माकूल पॉलिसी, साइंसी मालूमात, मकामी तजर्बात और कम्युनिटी की शमूलियत को यकीनी बनाया जा सके। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि आबो हवा की तब्दीली के सबब बारिश की सूरत हाल ज्यादा गैर यकीनी हो रही है और इसकी वजह से ज्यादा बारिश और ज्यादा तवील अरसे तक बिल्कुल भी बारिश ना होने से निपटने के लिए तरीक़ेकार की जरूरत पेश आ रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करना, बारिश के पानी को ज़खीरा करना और मौसर आबपाशी की पानी की बचत के जामे तरीक़ेकार लाजमी तौर पर हिस्सा होने चाहिए। इस मौके पर खिताब करते हुए जल शक्ति के वजीर CR पाटिल ने पानी की बचत की अहमियत को उजागर किया और कहा कि हुकूमत मुल्क के हर शहरी को महफूज और माकूल पीने का पार साफ पानी फराहम करने के लिए अहदबस्ता है। उन्होंने कहा कि पानी एक मुश्तरका वसीला है, लिहाजा सबके लिए पानी की यकीनी फराहमी भी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। आकाशवाणी न्यूज से खसूसी बातचीत में भारत में नीदरलैंड की सफीर मारिसा गेरार्ड्स ने कहा कि पानी की बचत भारत नीदरलैंड कलीदी शराकतदारी का एक अहम सुतून है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की सख्त मजम्मत की है। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत

0: बातचीत करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि खुद मुख्तार हमसाये के खिलाफ जारहियत के ऐसे वाकयात इलाकाई अमनो इस्तेकाम के लिए खतरा हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के साथ साथ उसके अवाम की फलाह व बहबूद के लिए भारत की फौरी मदद का इरादा किया है। तर्जुमान ने फजाई हमलों में जान गंवाने वाले शहरियों के तई ताजियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के इस बयान पर कि पाकिस्तानी मुसल्ला फोर्सेज दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुसलसल अहद बस्ता हैं, जनाब जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को इस सिलसिले में कार्रवाई और पुख्ता अज़्म का मुजाहरा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद को इससे पहले कि दुनिया उनके कहे पर यकीन करे सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ मुअसर कार्रवाई करनी चाहिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात की तिजारत के खिलाफ ये कहते हुए सख्त और फैसलागुन कार्रवाई पर जोर दिया है कि मुनशियात मुल्क और दुनिया के लिए एक संगीन खतरा है। आज नई दिल्ली में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सरबराहान की मुनशियात के खिलाफ टास्क फोर्स की तीसरी कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत मुल्क के नौजवानों के तहफ्फुज़ और भारत को मुनशियात से मुबर्रा करने के लिए 2029 के लिए एक नक्शेराह तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विजन को हासिल करने के लिए मुनशियात से मुबर्रा भारत का हदफ इंतहाई अहम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अवामी खिदमत के 25 बरस मुकम्मल कर रहे हैं, जो जन सेवा से देश सेवा के मंत्र पर मबनी है और इस पुख्ता अहद का सिलसिला जारी है। सेवा और सुशासन के इस नजरिए के तहत हुकूमत 2047 तक विकसित भारत के हदफ को हासिल करने की खातिर अनथक काम कर रही है। सबकी शमूलियत वाली तरक्की और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाए जाने के जरिए लोगों की जिंदगियों में अक्सर तब्दीली लाई जा रही है। आज अपनी खसूसी सीरीज में हम इस बात का तस्करा करेंगे कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के जरिए किस तरह इस नजरिए को हकीकत में तब्दील किया गया।
1: अगस्त 2016 में शुरू किया गया हुकूमत का ई मार्केट प्लेस GEM मुल्क में सरकारी खरीद के लिए एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। ये प्लेटफॉर्म बेचने वालों और खरीदने वालों को एक मुश्तरक ऑनलाइन प्लेस तक लेकर आता है। 2023 में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने पर बजट के बाद एक वेबिनार से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को उजागर किया कि GEM पोर्टल ने किस तरह छोटी सनत के मालिकान और रेड़ी पटरी लगाने वालों को हुकूमत की खरीदारी के अमल में शामिल होने के लिए बाइख्तियार बनाया है। छोटी बहुत छोटी सनतों, खवातीन एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स और दीगर फरोख करने वाले अफराद की शमूलियत से GEM मुल्क में डिजिटल सरकारी खरीदारी की पहुंच में मुसलसल इजाफा कर रहा है। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने आज नई दिल्ली में शहरी हवाबाजी की वजारत के साथ उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के अगले मरहले के तहत एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने अगले मरहले के विजन को उजागर किया। वजीर मौसूफ ने बताया कि स्कीम को मजीद 10 साल के लिए तोसी देने से हुकूमत का मकसद मुल्क में 100 नए हवाई अड्डे और 200 जदीद हेलीपैड्स तामीर करना है। जनाब नायडू ने इस बात को उजागर किया कि 2014 में शहरी हवाबाजी के शोबे में तकरीबन 30 लाख मुलाजमतें थीं, जो बढ़कर आज तकरीबन 77 लाख हो गई हैं और 2040 तक इनकी तादाद 2.5 करोड़ होने की तवक्को है। जनाब नायडू ने कहा कि उड़ान स्कीम के तहत पिछले 10 वर्षों में 90 से ज्यादा हवाई अड्डे तामीर किए गए हैं, जिससे तकरीबन 1.54 करोड़ मुसाफिरों को आरामदेह फजाई सफर की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस तकरीब में एरोडोम डेवलपमेंट के लिए चैलेंज मोड पोर्टल भी शुरू किया गया और उड़ान रूट की बोली के अगले मरहले के लिए स्कीम दस्तावेज जारी किए गए। गेंडे के आलमी दिन के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए एक सींग वाले गेंडे नहायत अहम हैं और वो तमाम लोग एहतराम के काबिल हैं जो इसके तहफ्फुज में लगे हुए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि आसाम दुनिया में पाए जाने वाले एक सींग वाले गेंडों में 80% का घर है और उनके शिकार को कम करने के लिए काजीरंगा की कोशिशें काबिले सताइश हैं। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा, साहली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ इलाकों में अगले 2 दिन के

0: दौरान इंतहाई शदीद बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, झारखंड, केरलम, महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तेज बारिश की पेशगोई की गई है। आईएमडी ने कहा है कि कौमी राजधानी खत्ते के ज्यादातर हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और बारिश का इम्कान नहीं है। भारत की खवातीन क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में मुसलसल दूसरी मर्तबा सोने का तमगा जीतकर अपनी बरतरी बरकरार रखी है। भारत की टीम ने आज जापान के निशीन में फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को 147 रन से हराया। इन एशियाई गेम्स में यह भारत का पहला सोने का तमगा है। अभी तक भारत ने कुल 7 तमगे जीते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस कामयाबी पर खवातीन क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दी। भारत की मर्दों की बैडमिंटन टीम ने क्वार्टर फाइनल्स में मेजबान जापान की टीम को हरा दिया और इस तरह उसने एक और तमगा यकीनी बना लिया है। भारत के मुक्केबाज जादूमणि सिंह मर्दों के 55 किलोग्राम जुमरे के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के एकता नगर में साल 2024 के लिए 72वें कौमी फिल्म अवार्ड अदा किए। सरकर्दा कन्नड़ अदाकार अनंतनाग को दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया। यामी गौतम, कार्तिक आर्यन और ममूती को बेहतरीन अदाकार के अवार्ड दिए गए। भारत ने अफगानिस्तान के कुनार और पक्तिका सूबों पर पाकिस्तानी फजाई हमलों की मजम्मत की है। उसने इलाकाई अमनों इस्तेहकाम को खतरे के लिए पाकिस्तान की तनकीद की। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुनशियात के खिलाफ सख्त और फैसलाकुन कार्रवाई पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत 2029 तक भारत से मुनशियात की गैरकानूनी तजारत को खत्म कर देगी। मरकज ने उड़ान स्कीम के अगले मरहले के लिए 21 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के साथ मुआहदे किए हैं। मुल्क भर में 100 नए हवाई अड्डे और 200 हेलीपैड्स तामीर करने का हदफ रखा गया है। और एशियाई गेम्स में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने मुल्क का पहला सोने का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: در سپین تیز آکاشوانی دلی کنن هندی انگلیسی تونا اورتیانو خبرون لان یعنی نوت پین میدیم ویوی کان اچیز آکاشوانی کارگیلی کنن زیر نوت. وقت پو تسو ترگون پیتسان سو کسطا شینا پروگرام یعن مزد پونر پروگرام پروچو کن پوین محمد ابراهیم پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین.

0: asno sitak bilo walo asoine baigune tesheji abate juto ya soite alo kashboni tokboni kuloboni so asoje sitak theda to kot asoje jama chono tayari chumas
1: bilkul
0: yani asoite ke to jok bon ho asoite yono no yon asno jok bil lao kathin bil
1: bilkul
0: lao tak bil se se asoite jok buju to asno malare asne bachore se so kari be sitak chona sitak jok ho asno kaatu bun guyan ro bun yani kui alo faselo kulo shushari besu doi se jal the to seno satu khale besu tayari chonas gumso jevi telo sitak chonas tamam cheez ho ke to asoiti jo khunju
1: bilkul bilkul ja sab to sahi raja jo asoiti yo no kar anya cheez sitak thuno zaruri bani ke thun to jo sab hun tala kare to walo yono tsokso bini ke tun tun nilar shachi
0: bilkul ju bilkul
1: heju junur hamesha fasli walo go beno yono go beno
0: kene acha problem mish bilkul bilkul
1: asno ala ke jis rup asno ti fasli dune to ben nish ai fasli doj be munasiran ke tun to anu october ju to gi asoite ki to loste march april ke dak
0: heju
1: ani so asoite tayari thono ju asni mal maveshere tayari asoite ka tayari hai ju asoite kharchu tayari asoite kshulu tayari asoite kaatgaro tayari hai ju ani tayari thin anu waqt
0: bilkul hai ju asoite tayari thin to asoite war ga nush ke jo asno alaka hi atau sarat yani cheo khatarnak chei ga hinu alaka
1: bilkul bilkul
0: asoite yono agar kot agar asoite sambhal bo sitak nithes gata yono asni zindagi kathin bane legilai sakat boli sesi karyo asoili jo khaju sita thene to asoiti war bilkul nush malare boni ya asne asne bajore bonu asne alake jahan jakore bonu besu akine akine jago ja akine basi se jok thana ju sesu karyo sita thana
1: bilkul jo sab ke chun to yon asoiti anu temperature माइनस है बुझो माइनस माइनस बीस के बुझो असोली तो उससे कुनी असोती क्रोमी थोनो वार भी नुश
0: बोनु नुश
1: बोनु या दारो और वो ये खजोनो या क्रोमी थोनो असोती वार भी नुश
0: ताकत बोनु जो
1: तो खजोनो आज कार कोती सी असोते है जो अनि तैयारी थोनो जरूरी बेनी कि असोते लोस्ट ऑन हो ओन रहे जो कनी किस्म असोते जरूरत चीज है बेनी सया असोते सटे छोरनो जरूरी बेनी
0: जरूरी बख्शीश
1: तो असोइते चाहे से असोइते असने बोन इन छले बोनो या काट बोनो है जो कनी का किस्म होते है असोइते जरूरत है चीज है असोइते असने माल मवेशी रे या असने तीर सुरे है जो
0: बिल्कुल
1: बावजून चीज बेसु से टाक थे छुरे नो जरूरी
0: जरूरी नुश तो असोइते लाओ कठिन हो जिया
1: बिल्कुल
0: से सो मतलब असोइते जमा छोनो जरूरी लाई लाई जरूरी बेनी के असनो असनो अलाका ही छयो अलाका बिल तो हिंगलाव वजन से असोइते मालर का खतरा बेनी अगर अश बे संभाल बो नेचेस गटे योन असोइते जिंदगी कठिन मोरे लाई कठिन बने
1: बिल्कुल बेसको तो अनुटे में पाशन रिजॉर्ट साहब की कानुगा धर मुठो या दाष्ट के जा काट फुड़े छोरे तो सब को सुजरी छोरना
0: बे
1: छोरना सुशारना के सुजरी छुरन तो लोस्ट काटे फुजोन का आराम आमरा में ना के तो दुम हम बिनुश दुम मन तो सो दुम लोस्ट नोट बेनो आज काटी के इस्तेमाल थे वसे दुम थोशी बु दुम बन तो सो दुम असने जर खोर एना गोरे तो सो दुम सनोरे नोट बेनो खुज एनी या जो दम हम करे तो सो के छु तो मेज तो अन काट असोई ती गिए ने वाला ना
0: ने वाला जो मेज तो लाई कठिन असली जो दर बिदर असली मुलाए खजबो ने ले शायोर बो ने ले शायोर गे काटो छिनो नो वालो नो सखत से सखत दर बिदर असली त कोते तो कशिरो काटो पुंग गाड़ी फोई गिना से चुने ते कोते सेरा तो शुशिरो नो साइट को ते छोड़ना आराम जो कोते यूपे फास के लाते शुशो तो लोश तो आरो हुंटना मेजे तो लाई कठिन है जो मेजे दर बिदर लाई असली
1: काट गया
0: चल तो बुझ ने खजी मुला एक चीटो को एक प्या तो खजी बने ले एक शयो रे खजी बने
1: बिल्कुल
0: शयो रे के साया से दर बिदर पशी काटो डी डर थे रे ते जम था तो टोक 12 1 बजे खरी गोश गोश मुलाए फेन ले से कुंतु लाई दर दर ली कोते तो गाड़ी तो कोई ओमो कशरो वाले काटो पेने दे खरीद थे घी तो से बुढ़े चेहरे को तो चुनते छोरे जो की कार्यो ताकि असोई ते लोग टूटे हो वक्त ओन हों ते असोई पता है से सी कार्यो बेसु चुनते चेहरा तो शुशरी छोड़ना को ती बेसु तैयारी
1: तो असने जी तुम तलिश हान एक से गा बाजोनो कटी छोरना रे जो कटी छोरना से कटे तो थोजा क्रप थे चुन थे छोरना
0: बिल्कुल जी बिल्कुल
1: ताकि असोई ते यौन रे अनि काट इस्तेमाल बेन थे
0: या
1: थोशे थोशे हाँ से तो बाजरो मूली गे किंगड़े अगर असोई ते ब्याई

0: वो बेटो इंसान कोते अगर ने चाके अनि तैयारी ने थिल तो लोष्ट सखुनी लोष्ट जुग योन वो तो कोन बुझ बुझ नि जा शिनी मिसाल गे जो क्वारो से आजा बेटो तो क्वा क्वा जो तो खारिया लोई वोइस आस्ते ने ती के तो तू साच तो गुका सिंगलेन टे मै तो थोने सिंगला
1: बिल्कुल
0: आज तो आजा बेटो क्वा तो माली दिजो तो आ करते फ्रो रोते तो सिंगले की ही सारो याव भाषक बुझ जा सोई ती मुश्किल आ बुझ क्वारे से गुना जितर बेटो लो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: के तो आजा आज बेटो तो क्वा तुम ती खारी हिंद वाजी खाडी लम तमाम बुलो के तो कोनो खाई पेरासो सिंगले नि माली दिजो खर्तर रसोई जमीन खर्तर अशुर थे तो अशो सिंह ले गई से सिटाक थे गई रस रसो सिटाक चो नहीं जिया
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अनि त्रुशुन किसुम मिल जिया त्रुशुन किसुम त्रुशुन तो नसबे सु
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: आस जमीन खर्तर टंडली हरे जिया दो को हरिया तो रस अरो सिंह ले चरन थी सिटाक
1: बिल्कुल अनि फिलील से सिंह ने चरन थी ना रे जु
0: हाजु
1: फिलील से के सिंह ने चरन थी ना रे नो
0: सिटाक बिल्कुल जु रस कितनो कुनो रोता हरी छो ना जु
1: बिल्कुल आई फर्स्ट असोइते कनो योन और बोनन ठिल रिया लकिना
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तातु छुलो असोइते इंतजाम थियो जरूरी बेनी
0: बिल्कुल जु
1: के थियो तो अनि हल्का छिले योन इस्तेमाल बेन नुश है जु
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो अनि खास कर असने चुने बालना रहे जु योन तातु छुलो तैयारी थियो जरूरी बेनी के थियो तो जे आम योन दरो सचा दरो बेना चुके थे ना तो जे से गुने नुश की अनु चाइस मुझे जे कसर एक तीर से गुने
0: सर भी या अटेक भी बे बीमार बोलते संबत है
1: से शिकारियो है जो अम्मा मालो फरज बेनो की अनि चुन वालो रे गाजे ननी
0: रे चुन
1: योनो कार तातु छुल इंतजाम थे छुरो नो के थ्यों तो सोते लेल हैं कि योनो थोशिबक रोग गथोशाय बिना के चुन चायो वक्त से यानी नजला थे जुकाम थे बुखार थे आकिसम थोशिबेनी आ के बे नहीं तो अनि गफलत हो जाए बे नहीं गफलत थ्यों तो इंसान से यानी ताताओ छुल ने बनी बे तो जैसे चाइस जैसे अटैक थे बुजू
0: बिल्कुल बख्शिश बख्शिश बख्शिश बिल जू सो उसूल बिल मा से सिकारियो तो तैयारी थ्यो ने उजुड़ो एडवांस है जा बाल मुलाई लो छिलो बोनी ताताओ छिलो यानी ताती आई कमीज ज्यादा तरको ते अनु नेलून इस्तेमाल बुजिया नेलून मा बिल्कुल असोई थी नोटबुक
1: बिल्कुल
0: मैं जा तो रेसो सुरुस सो कनु का चीज इस्तेमाल बेलो सुरुस चीज इस्तेमाल बो तो नोट ने बेलो जिया कोते शिंगेनी फिलान बेनी ब्रमे जुर्मों अंसे जुर्मों ज्यादा तर कोते असोई थी छिलो जो इस्तेमाल बुजू नेलून चीज नेलून चीज असोई थी मजहर बिल जिया कोते का असनो अगर लोकलिटी असनो पश पशो मिसाल कमीजे नहीं अनि सुरसो अगर इस्तेमाल बिल तो बेहतर बिल जो बाल मार आ किस्म योनो चीज को तो मार्केट आएगा शायद ले योनी बे को तो प्रहे प्रहे नहीं जो फर्स्ट क्लास थे प्रहे प्रहे नहीं अगर सो चीज खरीदते गिल तो फायदा मंद बिल जो
1: बिल्कुल जाओ सब नाला नाला मिसाल असने गोर जारो खोर गए ना जो
0: बिल्कुल
1: जारो खोर होगा मतलब असने जरूरी बनी कि नोरे के चुन तो ट्राई हुआ तो हिसाब पे नोरे जिनी बॉडी सचा ग्रे गिनी के चुन तो जवान का जारो लाइफ फरक
0: फरक होनी फरक बिल्कुल जो फरक से तो जारो मसला बुझू जारो के तो ताकत छंबे नहीं जो डिमा जाते नो डिमा ले लो कमी पेशी नहीं जवान का जा रहे तो फरक होनी बिलो जो है
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल
1: तो सनोर तवज्जो जो नो सनोर तातु छिलो को इंतजाम थियोनो या तातु लाई तो इंतजाम थियोनो असोजे फरज बेनो के थुन तो अनि रोग वजे खासकर जो नो खूज होनो या जो अनि दम्बा बोनो है जो आ किस्म लाई बेनी तो धूम ने भी लाई थे के छोरियो नो या जो नो तातु छिलो इंतजाम थियोनो फरज बिल
0: सो जरूरी बिल जू नोरे तातु छिलो जनोरे अलकाई कमरा के जा यानी बुखारी क्वीता तो छोरी तो सनोरे धूमो बुखारी या कम आई धूम बुझ या
1: बिल्कुल
0: काटो की पैकिंग आई वो तो जनोरे
1: कमरा अच्छा कमजोरी यानी कमजोरी अच्छा बर्दाश्त भी
0: नहीं बर्दाश्त जवान फर्श मार जारो खोरो बोनो निश के जनो डिमे ताकत कम यू बुझ जनो डिमो लेल कमी पेशी भी बुझ जारे खोरो लाई कठिन बिल जू
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: यानी उम्र आल हिसाब जा जनोरे प्रॉब्लम भी नहीं जू
1: अनि से अलावा असोई थे एक किस्म को मतलब शे होगा तैयारी थे बुझा असने अला कचे को रहे जो या जो या योन कार अनि जो मूल योनो
0: बिल्कुल
1: सटे छोरोनो
0: काफी चीज जो से इस्तेमाल में केने भी असोई को ते मूल बिउ गोबियो शाबु अच्छा अनिक तमाम शुगो आप गोबियो पाटे बिले पेराव पालक फिलान पिजान
1: बिले
0: शुशरी छोड़ना जी पागमे भी नहीं जू पागमे शुशरी छोड़ना
1: जी से तो अंचार प्रेशर ना डे जू
0: बिल्कुल बिल्कुल योनो कार्यो बिल्कुल तैयारी छोड़ना जू आउ चीज असोईली शुशरी को तो तमाम बुरे रहते तमाम ठेलो आरो भी तो पेक था तो गुमसो जो रहते छोड़ना जी ताकि लोस्ट योनो असोई थे आई चीज बुरो इस्तेमाल बुन खा लेता था
1: बिल्कुल बिल्कुल खास कर अनुशु कुशा सोचते
0: मजर रही भाई मजर रही को तो सोली।

0: Onga
1: Nato.
0: tayar buma soli. Zonge
1: Gepang.
0: ena, mule ena, acha shuku sha to, shangye kaza isha parte bure kale grab tato
1: Grab.
0: shusheri chore, loshtu yon ara me bache, yon aso iti lejon asan bi, nush, yon aso iti lai katina jiya. To sesi kaji a chizi, tayari chon has besu.
1: Bilkul, bilkul.
0: Yonu tayari kot anu tembil jiya. Yon re besu, chizi a tamam bure tayari
1: Anu
0: chon.
1: waxe misal asol ti ek tari tan ju asni ani pas hoye ju
0: बिल्कुल
1: पास रनु ते में शहर जे खले छोर ना
0: शरे जे खले
1: असने
0: छोना पाश खले छोना जी पाश तो खलियो ना हम लोग के तो पाश वाजे मतलब जी तो जा जा उसे या छे चोली हरिया उसे को तो हरी था तो सद सुम चो को था तो ताकि लेवल आने वाला लोग तो बाजोन रहे तैयारी थी छोना जी से बुरी तमाम बेन जी से बुरी
1: अनु वक्त है ये
0: सुम
1: गले जैसे
0: में
1: ले
0: अनु वक्त है भी था तो छे छे शादी छोरे ना सद एक छे जे कह रहा तो बुर था तो सुम भी था तो सो सुम खटे छोड़ना जी पाश बाजोन रे तैयारी अब उड़ी थे भी नहीं भैया कोते
1: बिल्कुल
0: शहरों से सिखारी बिल जिया
1: माल दौलत यानी लश छाल हाँ तीर हाँ से जन नहीं है जो इससे से तारीख थे छोड़ा ना कि भाई असोई यून ओन हनो असनी
0: बिल्कुल
1: माल रे या कट एक ग्रुप एक या जुया जुनो रे छक के को इंतजाम एक थे
0: बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल
1: छोड़े
0: बिल्कुल
1: ना
0: बख्शिश
1: के तो मेज तो यानी माल छाल ला या सिली
0: लाया सिली लाया सिली मेज तो लाया सिली कोते तो कमी पेशी भी नहीं जो
1: बिल्कुल
0: मेज असोली माल चाल लाओ बो तो पाश काफी पाश बेली से असली कुइजा काफी फायदामंद चीज बेलो कोते माल कम थे अंशे असोली कोते कम थे चम थी
1: बिल्कुल
0: बो तो तवज्जू जो नो जरूरी बिल कोते का
1: तो
0: माल
1: जनो
0: बिल
1: रगा
0: जरूरी
1: मिसाल आई माल छाल रगा असने तीरिस बोनो अश्पी बोनो रे बोनो सेनो गा योन आई थे डाक थे ने शुरू नो फात थे ने शुरू नो के वो हाल उन्होंने कमाई था तो असने टेक्स आता है फात शुरू ना रे
0: फाते
1: जू
0: छोने जी
1: तो जनो रे
0: बिल्कुल
1: जरूरी बिल
0: बिल्कुल
1: कोती से जनो रे तैयारी थे शुरू नो
0: सेनो
1: कर
0: का जो
1: दुपो
0: ओ बिल्कुल जो सो जरूरी भी जो सेसो का जो फाते छोरियो नो तो आस ही का पाप इन रे कोते जो तना लापरवाह थो तो फात बोफा चमलो सोमा कोते अगर संभाल बोई काचे ग्रुप एक तमाम चीज आप लोग कोते बेसु अगर सिटाक थे छोलेस तो लोस्ट आप लोग फात छोनो जो कोई योनो सोली टक बिल्डो योनो ताकि लोस्ट आप लोग बंद थे छोरे नाराम थे अरुबी काचे कोई ग्रुप एक कोई मुझे थे फिलाने थे जनी परवरिश क्यों अरुबा छोरे लटे कूं छाले कूं अश्पे कूं रकुले कूं इन लोग जो जमींदार भई
1: जमींदार
0: असने
1: साना बिल्कुल बिल्कुल
0: असोई ना बुरी होनी
1: बिल्कुल
0: सच्ची
1: बिल्कुल
0: का जो तो तैयार बोना रे जो शारो वही जो कर भी शारो अनु चीज के तो बेसु सिटाकिंग चोनास माल वतन या इंसान वतन
1: बिल्कुल
0: सच्ची का रे बेसु को तो सिटाकिंग थे जो जरी नुरो यो नु लोस्ट आओ हिना जा फाते चोनास अशु बोनु रकुन बोनु मिसाल फाते चोरे तो तमाम हाई जाकुली तो मोगा नुस्तान चार जे
1: बिल्कुल
0: तो जो
1: बिल्कुल
0: लाओ गुना बिल जो बुरी जो सबसे वो गुना बिल जो गुना जो तो बचाई बोने का जो तो अनु किस्म सिटाक था तो छोरे लोट आराम थे उड़नी तो सा आरोरे सी खेदमत थे तो सिटाक थे छोरे सो फायदा हो
1: बिल्कुल बिल्कुल तो जो साहब असने प्रोग्राम कुंडे नुकरे अनु आजु की मुश्किल असल असनु योनो है जो
0: योन
1: थोड़ो
0: विंटरो बारे
1: बारार
0: जा
1: तो
0: यानी योन असो जी कनी भी कनी
1: बिल्कुल
0: सा भी
1: बिल्कुल
0: संभाल बोने बिल्कुल
1: तो मुश्किल जो कानी रटून बेसु या तानी एक मुनाजात कुंडिया अहमद जवान शोज
2: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।